ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में

0: मेरी वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स DTS DRM, 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे

क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को करेले की खेती विषय पर ये जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम करेला की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सफल खेती के लिए ज़रूरी है सही भूमि का चुनाव। आमतौर पर इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत तैयार करते समय यह देख लें कि उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं। अगर नमी की कमी है तो पलेवा दे करके यह कार्य करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, फिर बाद की 3-4 जुताइयाँ देसी हल से करनी चाहिए। तत्पश्चात पिछली फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकालकर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। खेत की तैयारी के समय लगभग 250 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति बीघा की दर से आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय यूरिया की 1/3 मात्रा तथा डाई अमोनियम फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग कर देना चाहिए। बची हुई यूरिया की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसे 2 बार में, पहली मात्रा जब करेला में 3-4 पत्तियां आ जाएं तब, तथा दूसरी मात्रा जब उसमें फूल

0: निकल रहे हों तो देना चाहिए। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए तब बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए तीन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक तो उन्नतशील किस्म, दूसरा बीज की सही मात्रा और तीसरा बुआई का सही तरीका। जहाँ तक इसके किस्मों की बात है तो पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर बारहमासी, अर्का हरित और फैजाबादी करेला इसकी उन्नतशील किस्में हैं। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी संपर्क करके आप अच्छी प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बीघा खेत में करेला की बुआई कर रहे हैं तो 1 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि 4 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तैयार खेत में 2 मीटर की दूरी पर 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं। अब नाली के दोनों तरफ जो मेड़ बनती है उस मेड़ की ढाल पर बीज बोते हैं। लाइनों में बुआई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए तथा बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक स्थान पर 2-3 बीज डाले जाएं। अब बात आती है इस फसल की देखभाल की, और देखभाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सिंचाई का। चूंकि यह गर्मी की फसल है अतः खेत में नमी जल्दी उड़ जाती है। इसके लिए प्रत्येक 6-7 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में निकाई गुड़ाई करके उसमें से खरपतवार निकाल देते हैं। इससे खेत में नमी संरक्षित रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है। करेला की फसल में कुछ कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है, इसको समय रहते नियंत्रित करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि करेला की खेती करते हैं तो प्रति बीघा लगभग 40 कुंटल, कहने का मतलब ये कि लगभग 150 से 160 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार इससे मिल जाती है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर करेला की खेती करनी चाहिए।
1: करेला की खेती, खेती की बातें कार्यक्रम में अब इस विषय पर किसान भाई जानकारी सुन रहे थे। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। कुछ ही पलों में लेकर आ रहे हैं आपके लिए हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रस्तुत है हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रार्थना में हम क्या करते हैं ये प्रभु खूब समझते हैं, लेकिन वो हमसे क्या कहते हैं ये हमें समझना होगा। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ, मैं और कुछ नहीं, तेरा विश्वास हूँ।

भक्ति का आधार है विश्वास। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक परमात्मा पर विश्वास करना कठिन है।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में जिन कलाकारों को आपने सुना उनके नाम हम आपको बता दें। जगजीत सिंह, ए हरिहरण और विदुषी गिरिजा देवी। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब प्रस्तुत है आज का हमारा विचार बिंदु कार्यक्रम।
1: संत तुलसीदास कहते हैं कि सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, ये सब परस्पर विरोधी तत्वों से विधाता ने इस जड़ चेतन गुण दोष में जगत की सृष्टि की है। संत लोग इसमें से गुण ग्रहण कर लेते हैं और दोष छोड़ देते हैं। तात्पर्य यह है कि सृष्टि द्वंद्वात्मक है। काले और सफेद दो पक्ष इसमें सदा से हैं और हमेशा रहेंगे। परस्पर विरोधी तत्वों के बिना यह सृष्टि अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी। लेकिन एक बात जो जानने योग्य है वो ये कि इन विरोधी तत्वों में से किसी की अच्छाई, बुराई या उपादेयता, अनुपादेयता निरपेक्ष नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना हम करते अवश्य हैं, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि प्रकाश सदा काम्य है और अंधकार सदा काम्य। प्रकाश में काम करते करते थक जाते हैं तो अंधकार की गोद में सोकर फिर नई स्फूर्ति प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतः सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, क्षमा, अक्रोध आदि को गुण तथा असत्य, हिंसा,

घृणा, प्रतिशोध और क्रोध आदि को दोष माना जाता है। मोटे तौर पर यह ठीक है, लेकिन यह कहना अधिक सही होगा कि इन प्रवृत्तियों का गुण दोषत्व भी परिस्थिति सापेक्ष है। जिसे गुण कहा जाता है वही किसी विशेष परिस्थिति में दोष बन जाता है, और जिसे दोष कहा जाता है वह किसी अवसर पर गुण बन जाता है। अहिंसा एक बहुत अच्छा गुण है। प्रेम उच्च कोटि का मानव मूल्य है। इन गुणों की सिद्धि प्राप्त करके अंगुलीमाल जैसे क्रूर दुर्दांत डाकू का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जब अंगुलीमालों की पूरी सेना हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, तब हमारे सामने दो ही विकल्प बच रहते हैं। या तो हम उनकी माला बनाने के लिए अपनी उंगली

0: रहते हैं, या तो हम उनकी माला बनाने के लिए अपनी उंगलियां स्वेच्छापूर्वक कटवा दें, या उंगलियां बचाने के लिए अपने हाथों में हम तलवार ले लें। प्रतिशोध की भावना आदिम युग की बर्बरता का प्रतीक है। सहिष्णुता और क्षमा ऐसे गुण हैं जिन्हें मानवता ने शताब्दियों की साधना और तपस्या से अर्जित किया है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि पूरी मानवता सहिष्णु और क्षमाशील नहीं हो गई है। ऐसे में यदि कोई हमारी सहिष्णुता और क्षमाशीलता को दुर्बलता समझकर हमें दबाना या हमसे अनुचित लाभ उठाना चाहता है और तब भी हम इन गुणों को धारण किए रहते हैं, तो कहना ही होगा कि ये गुण हमारे भीतर दोषित्व को प्राप्त कर चुके हैं। क्रोध को भला कौन अच्छा कहेगा? क्रोध के आवेश में लोग अनेक अनुचित कार्य कर बैठते हैं, दूसरों का ही नहीं अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आत्मरक्षा और लोक मंगल के लिए किया गया क्रोध गुण बन जाता है। इसी क्रोध के लिए वैदिक ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, आप मन्यु अर्थात क्रोध हैं, मुझे क्रोध प्रदान करें। हां, ईश्वर के उस बड़े भंडार में क्रोध के लिए भी जगह है। वहां अहिंसा है तो हिंसा भी है, स्वार्थ है तो परमार्थ भी है, सृष्टि है तो संहार भी है। गीता में अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप में इसी संहार कारिणी लोक क्षय में प्रवृत्त शक्ति के दर्शन किए थे। वहां सब कुछ है, वहां ये परस्पर विरोधी गुण, ये द्वंद्वात्मक शक्तियां अनवरत प्रवाहित हो रहे हैं। आवश्यकता उस विवेक को उत्पन्न करने की है जिसके द्वारा हम उचित अवसर पर उचित गुण का उपयोग कर सकें। इसीलिए तुलसी ने कहा है, अस विवेक जब दे ही विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। अर्थात विधाता जब ऐसा विवेक देता है तब दोष तजकर गुण में मन लगता है। कैसा विवेक? गुण और दोष की अवसरानुकूल पहचान कर सकने वाला विवेक। ये विवेक कृष्ण में था, इसीलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। वे जानते थे कि कोई गुण निरपेक्ष नहीं है, और यदि हम व्यापक हित में लोक मंगल के लिए हिंसा छल अनीति आदि दोष कहे जाने वाले तत्वों का भी सहारा लेते हैं तो अंत में वे भी गुण बन जाते हैं।
1: गुण दोष। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर आधारित आज का हमारा विचार बिंदु कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है और प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में बच्चों में होने वाले सामान्य रोग और बचाव के उपाय विषय पर ये जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर प्रीतम कुमार।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह है बच्चों का दमा। अधिकतर लोग बच्चों का दमा सुनते ही पहले तो घबरा जाते हैं। यह बीमारी घबराने के लिए नहीं है। अधिकतर दमा जो होता है या तो हमें इनहेरिटेड मतलब अनुवांशिक या कुछ एलर्जिक भी हो सकते हैं। जब ये रिस्क फैक्टर मिलते हैं उसके साथ यह दमा अपने आप को उजागर करता है। बच्चों में दमा का लक्षण होता है सर्दी, बार बार छींक आना तथा सांस लेने में मुश्किल होना। बच्चा अधिकतर जब सांस छोड़ेगा तो उसके साथ सीटी जैसी आवाज आएगी। यह लक्षण जो आप बच्चों में दमा के होते हैं लगभग निमोनिया की तरह मिलते जुलते हैं। केवल अंतर ये होता है कि दमा वाले बच्चों में बुखार नहीं आता है, बल्कि निमोनिया वाले बच्चों में बुखार के भी लक्षण साथ में आते हैं। तो दमा के नाम पे हमें डरना नहीं चाहिए। दमा वाले बच्चे अधिकतर जैसे ही सीजन के साथ उनको खांसी और सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, ये बार बार उनके साथ होगी। पहली बार है तो आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उन्हें कुछ दवाइयां दी जाएंगी, जिन दवाओं से बच्चे को काफी आराम मिल जाएगा। अगर बार बार होता है तो वैसे बच्चों को हम लोग इनहेलर या कुछ ओरल मेडिकेशन के साथ रखते हैं, जिसे आपको बराबर देनी होगी। उससे बच्चों में आगे चल के वो बीमारी कम होगी और बच्चे को तकलीफ कम होगी। दमा से बचाव के तरीके जिसमें हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, शीत व वर्षा में ग्रीष्मकालीन जो समय होता है उस समय हमें बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, सर्दी और बुखार वाले व्यक्ति से हमें दूर रखना

0: होगा, क्योंकि ये जब दवाइयां शुरू होती हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। वायु प्रदूषण से हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, इन सारी चीजों से दमा के जो बार बार होने वाले एपिसोड हैं और निरंतर दवा लेने से जो एपिसोड बार बार होते हैं वो कम किए जा सकते हैं। ये सब आम बीमारियों के बारे में चर्चा करने के बाद मैं अब आप लोगों से कुछ जनरल शेयर करना चाहूंगा कि जो हम आजकल के बच्चों में ज्यादातर देखते हैं कि बच्चों को सबसे पहले तो बॉटल फीडिंग सब बच्चों का फेवरेट हो चुका है कि एक बॉटल लेके मुंह में लगा के पीते रहते हैं, जो कि एक समय के अनुसार उस हैबिट को चेंज कर देना चाहिए। बच्चों को बॉटल फीडिंग नहीं करानी चाहिए, 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, जिसके बाद आप बच्चे को माँ के दूध से धीरे धीरे आप तरल पदार्थ, फिर उसके बाद सॉलिड अनाज, इन सब पे शिफ्ट करना चाहिए। वो चीज ना होने की वजह से बच्चों में न्यूट्रिशनल एनीमिया और कुपोषण होने के चांसेस ज्यादातर होते हैं। कुपोषण होगा बच्चा तो उसकी वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होंगे। दूसरा, मैं आप लोगों से सबसे विनती करूंगा कि आप अपने बच्चों का पूरा संपूर्ण टीकाकरण अवश्य कराएं। जितनी भी गवर्नमेंट सप्लाई में हमें टीके मिलते हो अवश्य अवश्य कराएं, क्योंकि ये टीके उन जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए हैं जिनके इलाज में हमें बहुत ही काफी एक तो समय लगता है, समय के साथ धन, और बच्चे की जो हालत होती है वो तो अलग ही बात है। तीसरा हमारा यह होगा रिक्वेस्ट कि बच्चों को स्क्रीन टाइम जो होता है वो आप लोग को ना के बराबर यूज करना चाहिए, चाहे स्कूल का हो चाहे ऐसे आप वीडियो दिखा रहे हो बच्चे को। अधिकतर माताएं अब आज के जमाने में मोबाइल ऑन करके बच्चे को स्पून फीडिंग कराती हैं, इससे धीरे धीरे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही खराब होता जाता है। बच्चे का जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो गड़बड़ होता है, तो बच्चा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, वो आगे चल के एक वर्चुअल ऑटिज्म में चला जाता है। इन सब चीजों से हम अपने बच्चों को दूर रखेंगे तब एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण होगा। एक स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है।
1: बच्चों की समसामयिक बीमारियां और बचाव के उपाय। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर डॉक्टर प्रीतम कुमार से जानकारी सुन रहे थे। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज भाग संख्या 146 में गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे पन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं, तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोलीं।

स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधारदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आई हम आपको दे रहे संक्षिप्त जानकारी। आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा रात 8:15 पर। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एक और कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 4:00। जी हाँ, कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर्स। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर और सुबह 7:31 पर सुनिएगा गायन। कलाकार होंगी विदुषी किशोरी अमोनकर। दिन में 12:45 पर सुनिएगा वायलिन वादन। कलाकार होंगे डॉक्टर रामचंद्र भागवत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 चंद गजलें होंगी सलमा आगा की आवाज में। दिन में 12:30 पर सुनिएगा भजन। कलाकार होंगे हनुमान प्रसाद। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर कलाकार होंगे सतीश चंद्र यादव और साथी। इनका गायन लोकगीत आप कृषिगत कार्यक्रम में 6:30 पर भी सुन सकते हैं। कृषिगत कार्यक्रम में लोकगीत के अलावा सुनिएगा बातचीत। विषय होगा मूंगफली की उचित उन्नत उत्पादन तकनीक। इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर प्रतीक सनोडिया से। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी

लेकर आएंगे रोज़ की तरह शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, सूचना और जानकारी। कार्यक्रम धरती के गीत का प्रसारण होगा शाम 5:00। आज सुनेगा इसमें राजस्थानी गीत। बहनों का कार्यक्रम अंगनैया दिन में 1:15 पर, जिसमें बहनें सुनेंगी गीत, संगीत, जानकारी और बातचीत। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आएंगे रात 10:00 और आपकी फरमाइश पूरी होगी दिन में 11:00। कार्यक्रम होगा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात 9:30 पर और कहकशा दोपहर 2:30 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:00 से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी का प्रसारण समय है रात 8:30 पर। रसरंग शाम 7:31 पर, झनकार सुबह 10:00 और मधुरिमा सुबह 8:45 पर। और अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:00 से सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी देर में।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जय जगन्नाथ जी की बनारस। और भाई क्या हाल चाल सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम

0: जी हाँ, आपके अपने बनारसी बाबू के साथ। तो आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस काशी में आज से रथ यात्रा का सुप्रसिद्ध लक्खी मेला शुरू हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर रथ यात्रा स्थित अपने पारंपरिक स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। आज सुबह मंगला आरती के साथ उनके दर्शन पूजन का क्रम भी शुरू हो गया है। भक्त और भगवान के रिश्तों की एक अबूझ पहेली है ये रथ यात्रा मेला। भक्तिभाव पूर्ण रिश्ते का एक ऐसा दृश्य जो अगले 3 दिनों तक भक्तों के नैनों को अश्रुधारा से भिगो देता है। बनारस भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का यह जो दिव्य विग्रह है, यह एक विशेष प्रकार का विग्रह है जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। न आंखें, न नाक, न कान, न मुंह, न हाथ, न पैर। तो आखिर भगवान का यह स्वरूप कैसे बना, इसके पीछे की क्या कथा है, आइए जानते हैं आज के गुड मॉर्निंग बनारस में।
1: स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में भगवान जगन्नाथ के रहस्यमयी स्वरूप की कथा मिलती है। श्री गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जगन्नाथ दिया गया है। कहा जाता

कहता है कि जगन्नाथ स्वयं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह भक्तानां पावनम साक्षात कली कलमश हारक। यानी कि भगवान जगन्नाथ साक्षात सच्चिदानंद कृष्ण रूप हैं, भक्तों को पावन करने वाले, वे कलयुग के कलमश दूर करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ का व्रज से अटूट संबंध है। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रात्रि में सोते समय हा राधे कहकर क्रंदन करने लगे। रुक्मिणी आदि रानियों ने सुबह जब उनसे रात्रि में सोते समय इस प्रकार क्रंदन करने का कारण पूछा तो भगवान ने मुझे तो कुछ याद नहीं ऐसा कहकर बात टाल दिया। अब सभी रानियां आपस में कहने लगी कि हम सभी कुल शील रूप और गुण में किसी से कम नहीं है, फिर भी हमारे पति श्री कृष्ण राधा नाम की गोप कन्या में इतने आसक्त क्यों हैं? अब क्योंकि माता रोहिणी ब्रज में उनके साथ रही हैं, इसलिए उनसे पूछने पर इसका सही कारण पता चल जाएगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन रुक्मिणी और अन्य रानियों ने माता रोहिणी से प्रार्थना की कि वे द्वारकानाथ की ब्रज लीला और गोपी प्रेम की कथा सुनाए। माता रोहिणी जी ने सुभद्रा जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया और आज्ञा दी कि किसी भी पुरुष का प्रवेश आज अंतःपुर में निषिद्ध है, चाहे वह स्वयं श्री कृष्ण ही क्यों न हो। द्वार बंद करके वे रानियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अलौकिक प्रेम की कथा सुनाने लगी। जैसे ही रोहिणी जी ने ब्रज की माधुर्य लीला का वर्णन शुरू किया, राजसभा में बैठे श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई चंचल हो उठे और वहां से चलकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अंतःपुर में आ गए। उस समय श्री कृष्ण और बलराम को अंतःपुर में देखकर सुभद्रा जी ने उनसे इस समय आने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रज लीला कथा का ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ कहीं भी और जिस किसी भी अवस्था में हो, वह हमें वहीं से आकर्षित करके कथा स्थल पर खींच लाता है। सुभद्रा जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, लेकिन द्वार पर खड़े ही खड़े उन्होंने रोहिणी जी द्वारा सुनाई जा रही अपनी ब्रज की मंगलमयी रास विहार की कथाओं को सुना तो उससे दोनों भाई प्रेमानंद में विह्वल हो गए और आंखों से प्रेमाश्रु बहकर गले और वक्षस्थल तक को भिगोने लगे। उन्हें देखकर सुभद्रा जी को भी महाभाव की अवस्था प्राप्त हो गई और इन तीनों भाई बहनों के शरीर ऐसे द्रवित होने लगे जैसे मोम की प्रतिमाएं पिघल जाती हैं। उनके नेत्रों के स्थान पर सिर्फ नेत्र गोलक ही रह गए, हाथ और पैरों के पंजे लुप्त हो गए, मुंह और नासिका के छिद्र आदि भी अदृश्य हो गए। स्वचरितम स्मर स्मर दारुभूतो मुरारी। अपनी व्रज प्रेम की रसमयी लीलाओं को सुनकर प्रेम के वशीभूत वे काष्ठ की तरह जड़वत हो गए, निश्चल स्पंदन रहित। भगवान श्री कृष्ण के आयुध श्री सुदर्शन जी भी पिघल कर लंबे आकार के हो गए। उसी समय देवर्षि नारद भगवान के दर्शनों के लिए द्वारका धाम में पधारे। अब उनकी तो सब जगह अबाध गति है, इसलिए जब वे अंतःपुर में पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान के अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए तो कुछ क्षणों के लिए वे भी स्तंभित रह गए। नारद जी ने श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के प्रेम से द्रवित अंगों को देखा तो संसार के कल्याण के लिए भगवान से प्रेम रूप स्वरूप में ही रहने की प्रार्थना की। तब भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में हम इसी रूप में रहेंगे और यही स्वरूप है भगवान जगन्नाथ का जो पुरी में विराजमान है।

श्री जगन्नाथ जी के उस दिव्य रथ के बारे में जानकारी देते हैं जो कि इन 3 दिनों के लिए भगवान के काशी भ्रमण का साधन बनता है। शीशम की लकड़ी से बना ये रथ शिल्प शास्त्र के उत्कृष्ट मापदंडों और सिद्धांतों का उदाहरण है। इसकी चौड़ाई 21 फीट और ऊंचाई 18 फीट है। रथ की संरचना 2 तलों में की गई है। पहले तल पर पहियों के ठीक ऊपर 14 मजबूत खंभे स्थापित हैं और दूसरे तल पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का अष्टकोणीय गर्भगृह बनाया गया है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर चांदी के पत्र मढ़े गए हैं जिन पर की गई नक्काशी अद्वितीय है। इनमें बीच में भगवान श्री गणेश, रिद्धि, सिद्धि और नीचे की ओर सूर्य देव और चंद्र देव की आकृतियां उकेरी गई हैं। द्वार के ठीक ऊपर नृत्य मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि के साथ मेरु यंत्र और श्री विष्णु देव यंत्र स्थापित किए गए हैं जो रथ की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। गर्भगृह के ऊपर बनी अष्टकोणीय छतरी अंदर से पीले और बाहर से लाल रंग की है। इसके ऊपर नीले और सफेद रंग के छाते और शंखाकार झंडे लगाए जाते हैं। अष्टकोणीय लाल गुंबद मगरमच्छ की सुंदर आकृतियों से सुसज्जित है। शिखर पर चांदी के दंड में 5 फीट ऊंचा और 3 फीट लंबा त्रिकोणीय चांदी का ध्वज और सुदर्शन चक्र लगाया जाता है। भगवान के इस रथ में परंपरा और आधुनिकता का मेल दिखाई देता है। 12 तीलियों वाले 14 लोहे के पहिए संकरी गलियों में भी रथ को घूमने में आसानी करते हैं क्योंकि आगे के 2 पहियों में विशेष प्रकार के स्टीयरिंग की व्यवस्था की गई है। रथ के केंद्र में कांसे से निर्मित सारथी और आगे की ओर रथ खींचते हुए कांसे से बने 2 अश्व लगाए गए हैं और इन पर चांदी के पानी की पॉलिश रजत आभा बिखेरती है। तो बनारस, ये है भगवान श्री जगन्नाथ जी के इस अद्भुत रथ की विशेषताएं।

0: और अब बनारस आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।
0: जी हाँ बनारस, काशी कथा। और काशी कथा के आज के अंक में हम बातें करेंगे काशीपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के इतिहास की। तो बनारस, आपको बता दें कि काशी में इस रथ यात्रा मेले का श्री गणेश तत्कालीन भोसला स्टेट के डिप्लोमेटिक एजेंट रहे पंडित बेनीराम और उनके परिवार ने कराया। यदि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पता चलता है कि सन 1790 ईस्वी में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधक और मुख्य पुजारी श्री ब्रह्मचारी जी थे। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उन्हीं दिनों पुरी के राजा से कुछ मनमुटाव के कारण वे सदा के लिए पुरी को छोड़कर काशी चले आए। महाराज ने उस समय तो क्रोध में उन्हें नहीं रोका, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मचारी जी जगन्नाथ जी का भोग छोड़कर और कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं। उनकी अचल निष्ठा भक्ति से परिचित होने के कारण पुरी के नरेश द्वारा उनके भोजन के लिए वर्षों तक बहंगी काशी भेजी जाती रही। एक बार की बात है, भयंकर बाढ़ आ जाने से कई हफ्तों तक प्रसाद काशी नहीं आ सका। ब्रह्मचारी जी बहुत लंबे समय तक भूखे रह गए। तब उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ कि काशी में मेरे मंदिर की स्थापना करो, भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। यह स्वप्न उन्हें साक्षात जगन्नाथ जी ने दिया था। इस स्वप्न से प्रेरणा पाकर ब्रह्मचारी जी ने भोसला राज्य के मंत्री पंडित बेनीराम और कटक के दीवान पंडित विश्वंभर

0: जी से मुलाकात की। उस समय ये दोनों भाई काशी स्थित अपने आवास आए थे। ब्रह्मचारी जी के निवेदन पर भोसला राज बैंकोजी भोसले ने पंडित बंधुओं को धनराशि दी और बलभद्र सुभद्रा समेत श्री जगन्नाथ प्रभु का मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसमें ब्रह्मचारी जी ने पुरी की ही छवि वाला काष्ठ विग्रह स्थापित किया। पुरी में रथ यात्रा मेला जिस तरह राजमहल के पास होता है, वैसे ही काशी में भी इस मेले का आयोजन पंडित बेनी राम के बगीचे के समीप होने लगा। जब परंपरा का ख्याल आया तो ब्रह्मचारी जी के आग्रह पर पंडित परिवार ने पुरी की ही परंपरा के अनुसार भव्य रथ का निर्माण कराकर काशी में 3 दिनी रथ यात्रा मेले का आयोजन करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में ये काशी के उत्सवी माहौल का पहला लक्खी मेला बन गया। सन 1818 में पुरी की प्रदक्षिणा कर ब्रह्मचारी जी काशी लौटे और यहीं 80 घाट पर समाधि ले ली। उनके चित्र, धोती और पीढ़े की आज भी पूजा होती है। वर्ष 1857 की क्रांति में यह क्रम एक बार टूटा था, लेकिन शीघ्र ही ये फिर से प्रारंभ हो गया। काशी का रथयात्रा मेला आज भी पुरी की तर्ज पर ही सजता है और 3 दिनों के लिए प्रभु अपनी ससुराल आते हैं। वर्तमान में बेनी राम जी के वंशज एक दामाद की तरह भगवान जगन्नाथ का आदर, स्वागत और सम्मान करते हैं। 18वीं सदी से परंपरागत थाती के रूप में सहेजे गए इस उत्सव का स्वरूप वक्त के साथ भले ही बदलता गया हो, लेकिन समय और काल के प्रभाव इस उत्सव के साथ जुड़े बनारसियों की श्रद्धा और आस्था को तनिक भी नहीं डिगा पाए हैं। तो ये था काशी कथा का आज का अंक।
1: काशी कथा।
0: और बनारस आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारी ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।
1: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू, प्रदेश के लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6-लेन और 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को कल मंजूरी दे दी। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,958 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
4: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए, जो बहुत पुराने शहर हैं, उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल 7 महत्वपूर्ण फैसलों को स्वीकृति दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6-लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
4: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
3: केंद्रीय कैबिनेट ने के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
5: कैबिनेट ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी स्वीकृति दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भव्य काशी सुगम काशी को समर्पित ये परियोजनाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुगम बनाएंगी, यातायात को नई गति देंगी और पर्यटन व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही ये कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। कल देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
2: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, ये शुल्क जीरो हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क जीरो हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोजगार और उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को सम्मानित किया। समारोह में केंद्र सरकार के 12 वर्षों में प्रदेश में हुए कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका कौशलम का विमोचन भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
3: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक कल संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों और विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। समिति ने प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले।
4: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमिटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में बिजनौर जिले के 16 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एजेंसी साचीज के 3 सदस्यीय विशेष दल ने बिजनौर के 20 अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया था। साचीज की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 16 अस्पतालों में

0: निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पाया गया। इनमें से 6 अस्पतालों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं और उनके भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं। बाकी 10 अस्पतालों को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज पंच सम्मेलन का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। साथ ही इस सम्मेलन के जरिए VBG रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों और उद्देश्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की समझ को भी मजबूत किया जाएगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कहीं कहीं बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, गर्मी और उमस भरी स्थितियां बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू। प्रदेश के लेदर और फुटवियर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में आइए सुने गायन। कलाकार हैं विदुषी किशोरी अमोनकर, राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगति है बाल कृष्ण अय्यर की।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन। राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगति बालकृष्ण अय्यर की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: कैच द रेन, बारिश की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
4: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
3: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
5: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ता

0: ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती

0: में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
3: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात

0: आयात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है, जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet clears 2 elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43 kilometer long 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi city at a cost of around 11,000 crore rupees.
3: Varuna Nadi ke kinare kinare.
4: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
3: 14,448 crore rupees ka banega.
2: The Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.

0: The dailies have noticed the India-UK historic FTA coming into effect, setting a new path, and also the cabinet clearing major projects pushing for semiconductor chips and mobile phone production. Iran threatens regional oil blockade over US sanctions is a headline in the Hindu. Well, the paper quotes Iran saying oil and gas will either be for everyone or no one as US claims waves of strikes. As the world-famous Rath Yatra in Puri begins today, President Draupadi Murmu in an op-ed in Hindustan Times has written about her childhood memory of prayers and hymns to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also set to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric, and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर आईआरसीटीसी वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमेरिका ने कहा है कि उसने आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को एक के मुकाबले दो गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इकतसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामानिकारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
3: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
2: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ है, सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4 लाख करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।

0: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: जनाब वैष्णो ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के

0: ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए चार अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अलाक्वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिद अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जगन्नाथ चकानेन लीला चलवारे।
3: रांची के दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासी बारी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने CCTV निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
0: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। آج صبح مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جمالپور میں تاریخی جگنناتھ مندر میں منگلا آرتی میں شرکت کی اور بھگوان کا آشیرواد لیا. اس کے بعد

0: रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाताबता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों, भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे, एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निज़ाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाज़त होगी ताकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों के तहफ़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमज़ोर करने की खातिर फ़ौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90 मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले 1-1 मैच में इंग्लैंड को 6 से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी 1-1 मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के नाफिजुल अमल होने की खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ये भारत बरतानिया शराकत दारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में 2 मुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।

0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमेरिका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम मधुरिमा।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658
7: 0542227658।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं शीशे की, वही शीशा जो दर्पण है, दर्पण जो सच दिखलाता है।

मन को दर्पण इसीलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी सामने के शीशे को तो हम झुठला सकते हैं, पर मन के शीशे को क्या। देखने वाला झूठ और सच सब कुछ बता देता है। अगर कुछ चाहिए तो पारखी नज़र।

जो अंदर से संवरता है उसका रूप बाहर से भले ही ज्यादा निखरा न दिखाई दे, पर उसे चाहने वाले दिल से चाहते हैं। बाहर का रूप समय रहते ढल भी जाए, लेकिन अंदर का दिनों दिन और निखरता चला जाता है और एक समय आता है जब आपको खुद से प्यार हो जाता है।

0: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम में यहाँ एक छोटा संतराल, लौट के आते हैं कुछ बातें और कुछ गानों के साथ बस थोड़ी देर में।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
0: दर्पण को दे। मधुरिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से सबका स्वागत। आज इस कार्यक्रम में बात हो रही है मन के दर्पण की, जहां सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो कुछ ऐसा हो जब मन के दर्पण में खुद को देखकर हमें खुद से प्यार हो जाए और बदल जाए सब कुछ। क्या नजारे, क्या इशारे।

दुख मन के आईनों को और साफ करता चला जाता है। कहते हैं आईना बनना दुनिया का दस्तूर है, पर आईना देखना कोई नहीं चाहता। पर जिसने आईना देखना सीख लिया, समझ लिया, जिंदगी उसकी और खूबसूरत हो गई। बस देखकर बदलना भी जरूरी है।

तो बस आज इस कार्यक्रम में हम आपसे यही कहेंगे कि खुद को निहारे, निखारे, संवारे और अपना ख्याल रखें। मधुरिमा में आज यहीं तक, दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। जिले की हलचल बस थोड़ी देर में हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल,
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
2: ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और समृद्ध जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को अनावश्यक रूप से दूसरे जिलों में रेफर करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि जिन बीमारियों का इलाज जिले में संभव हो उनके लिए मरीजों को बाहर भेजना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की व्यवस्था का भी जायजा लिया और निर्देश दिए कि सभी मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। यदि कोई चिकित्सक बाहर की दवा लिखता है या बिना ठोस कारण मरीज को रेफर करता है तो संबंधित चिकित्सक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्रसव कक्ष, SNICU, औषधि भंडार और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। ड्यूटी से अनुपस्थित मिले चिकित्सकों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा गया। साथ ही अस्पताल परिसर के सामने दो चरणों में पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए। बरसात के मौसम को देखते हुए ललितपुर में संचालित रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान शुरू होने से पहले जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता व अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को माइक्रो प्लान के अनुसार 100% कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और जल भराव रोकने पर जोर दिया। जिला मलेरिया अधिकारी अनिल क्रिस्टोफर मैशी ने बताया कि हाई रिस्कों में लार्वानाशक दवा का छिड़काव, गड्ढों को भरने, रुके पानी की निकासी और साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 35 करोड़ वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत ललितपुर में भी मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले में एक ही दिन में करीब 94 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। गोविंद सागर बांध की तलहटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश, अपर आयुक्त प्रियंका, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। अभियान के दौरान सभी को एक पेड़ मां के नाम लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी और अपर आयुक्त ने कल्याणपुरा में विकसित मियां बाकी वन का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया। अधिकारियों ने इस महाअभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में खेत तालाब योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत किसानों को खेत तालाब निर्माण पर 50% यानी

0: 52,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 में जिले के 180 खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खेत तालाब जल संरक्षण के साथ साथ मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और अन्य जलीय गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। ललितपुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की देवी आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम प्रधानों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए और गांव-गांव में सर्पदंश डूबने, आकाशीय बिजली तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया, राहत चौपाल, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव की जानकारी दी जा रही है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी समीक्षा की गई, जिसमें 2019-20 से और 2025-26 तक 9,098 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई।
1: ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
2: कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि अंतरित की गई है तथा शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधन को सुना गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5,00,000 तक का कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े लगभग 12,00,000 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी उठा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए DBT के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र को 1,200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। बाइट प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा के गांव सिंगापट्टी में मां ओणम देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही जहांगीरपुर के महालक्ष्मी मंदिर में करीब 50,00,000 रुपए, ग्राम माल के मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि में करीब 50,00,000 रुपए, वृंदावन के शोध संस्थान के भवन जीर्णोद्धार के 1,22,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा, देश और प्रदेश की सरकारें विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3,000 से ज्यादा मंदिरों में विकास कार्य कराया गया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के सभागार जनरल गंज मथुरा में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बलदेव पूरन प्रकाश द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाखों रेहड़ी पटरी एवं पथ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई है। योजना के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन, ऋण स्वीकृति, वितरण, क्रेडिट

0: कार्ड वितरण की सुविधाएं प्रदान की गयी। परियोजना अधिकारी डूडा राजकुमार चौधरी ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, डिजिटल लेन देन पर कैशलेस, समय पर ऋण अदायगी पर ब्याज अनुदान तथा क्रमश अधि राशि के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से हजारों परिवारों की आजीविका सुदृढ़ हुई है तथा वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याण जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप शहरी गरीबी स्ट्रीट वेंडरों एवं लघु उद्यमियों को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आज देश में वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार संवर्धन का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये सूचनाएं DCIRB कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त हैं। ये पहली सूचना थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार पूजा सोनी जो पुत्री हैं अशोक सेठ की निवासी हैं J8/11 डिगिया जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी की। पूजा सोनी की उम्र है 25 वर्ष, लंबाई 4 फुट 9 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये 19 जून सन 2026 दिन में 3 बजे से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा हरे रंग का टी शर्ट और जीन्स पैंट था। यदि आपके संबंध में कोई भी सूचना मिले तो कृपा कर जैतपुर कमिश्नरेट वाराणसी अथवा अपने नज़दीकी थाना या इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। नंबर है 7459970324। ये अगली सूचना है थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी से ही प्राप्त। इस सूचना के अनुसार विक्की सोनकर जो राजू सोनकर के पुत्र हैं निवासी हैं 23/1 ढिलवरिया थाना जैतपुरा चौकाघाट कमिश्नरेट वाराणसी के। विक्की सोनकर की उम्र है 22 वर्ष, लंबाई 5 फुट 4 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये 13 जून 2026 दिन में 12 बजे से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा सफ़ेद रंग का शर्ट और हल्के रंग का पैंट था। यदि इनके संबंध में आपको कोई सूचना मिले तो कृपया कर अपने नज़दीकी थाना या थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। एक नंबर है, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। नंबर है 9235656305। ये सूचना है थाना बड़ा गांव कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त। इस सूचना के अनुसार सपना पटेल जो पुत्री हैं राजेश पटेल उर्फ मुन्ना के निवासी हैं टीकरी खुर्द थाना बड़ा गांव कमिश्नरेट वाराणसी के। सपना पटेल की उम्र है 33 वर्ष, लंबाई 5 फुट के करीब है, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। ये 16 जून 2026 से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा पीले रंग की सलवार कमीज थी। यदि इनके संबंध में आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना बड़ा गांव कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। एक नंबर है, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। नंबर है 9415357497। ये सूचना है थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त। इस सूचना के अनुसार आरती गुप्ता जो पत्नी है चिंटू गुप्ता की

निवासी हैं मोहन सराय गंगापुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी के। आरती गुप्ता की उम्र है 25 वर्ष, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये 8 जून 2026 दोपहर से लापता हैं। आपके साथ एक छोटा बच्चा भी है। घटना वाले दिन आपका पहनावा नीले रंग की साड़ी थी। यदि इनके संबंध में आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

पहले और दूसरे दरवेश की सरगुजश्त सुनने के बाद अब दास्तान का एक और निहायत दिलचस्प बावा होने जा रहा है। अब महफिल में तीसरे दरवेश लबकुशा हैं, जो अपनी जिंदगी के नशेबो फराज, इश्क व मुहिमजुई और गर्दिश जमाना की एक ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं जिसका हर मोड़ तजस्सुस से भरपूर और हर वाकया हैरत अंगेज है। तो आइए मजीद इंतजार किए बगैर सुनते हैं तीसरे दरवेश की अपनी जुबानी उनकी सरगुजश्त।

तारी से दौड़ता रहा और शहजादा भी उसके पीछे बहुत दूर निकल आया। जब हिरन काबू में न आया तो शहजादे ने तीर चलाया जो हिरन के पांव में जा लगा। जख्मी हिरन लड़खड़ाता हुआ एक पहाड़ की तरफ भागा और शहजादा भी उसके पीछे चल पड़ा। काफी देर बाद वो एक पहाड़ी बाग, चश्मे और गुंबद के करीब पहुंचा, मगर हिरन

गुंबद के करीब पहुंचा, मगर हिरन अचानक नजरों से ओझल हो गया। शहजादा थकन और प्यास से निढाल होकर चश्मे पर हाथ मुंह धोने लगा। इसी दौरान गुंबद के अंदर से किसी के रोने और बद्दुआ देने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो अंदर गया तो देखा कि एक सफेद रेश बुजुर्ग एक मसनद पर बैठे हैं और जख्मी हिरन उनके सामने लेटा है। बुजुर्ग हिरन के पांव से तीर निकालते हुए शहजादे को उस बेजबान जानवर को तकलीफ देने पर मलामत कर रहे थे। शहजादे ने निहायत अदब से सलाम किया, अपनी गलती का एतराफ किया और माफी तलब की। बुजुर्ग ने फरमाया, बेजुमान मखलूक को सताना मुनासिब नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे। शहजादे ने अपनी गलती पर माफी मांगी, हिरन के जख्म से तीर निकाला, मरहम लगाया और बुजुर्ग की खिदमत में शरीक रहा। थकन के बाइस वो सो गया, मगर जागा तो हैरान रह गया। न बुजुर्ग थे न हिरन, सिर्फ एक पर्दे के पीछे एक बेहद हसीन दोशीजा दिखाई दी।

जिसके कदमों में वही बुजुर्ग ज़ारो क़तार रो रहे थे। शहजादे ने लड़की से बात करने की कोशिश की मगर वो खामोश रही। उस पर शहजादा ने कहा, कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, मुंद जाए चश्मे आशिक तो भी वो मुंह न खोले। इस पर भी जब कोई जवाब न मिला तो शहजादे ने करीब जाकर देखा, मालूम हुआ कि वो तो पत्थर का मुजस्मा है। ये मंजर देखकर शहजादा हैरान रह गया और बुजुर्ग से इस राज की हकीकत पूछने लगा। पहले तो बुजुर्ग ने इश्क की तबाही कारियों से डराते हुए कुछ न बताया, मगर शहजादे के इसरार पर अपनी दास्तान सुनाने पर आमादा हो गए। बुजुर्ग ने कहा, उनका नाम नुमान सैयाह है और वो एक बड़े ताजिर थे। दुनिया के बेशुमार मुमालिक की सैर के बाद उन्होंने जजीरा फरंग जाने का इरादा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक निहायत खूबसूरत, साफ सुथरा और खुशहाल शहर देखा। चंद ही दिनों बाद शहजादी की तरफ से एक ख्वाजा सिरा आया और उन्हें शाही महल में हाजिर होने की दावत दी ताकि वो अपने नायाब तहाइफ पेश कर सकें। अगले रोज नुमान सैया शाही दरबार में हाजिर हुए, जहां उनका निहायत इज्जत एहतराम के साथ इस्तकबाल किया गया। नुमान सैया को शाही महल के एक निहायत शानदार कमरे में ले जाया गया, जहां हुस्न जमाल का ऐसा मंजर था कि वो हैरत में डूब गया। जब उसकी नजर शहजादी पर पड़ी तो उसके हुस्न का असीर हो गया और उसके होश उड़ गए। उसने अदब से सलाम किया और अपने साथ लाए हुए कीमती जवाहरात, उम्दा कपड़े और नायाब तहाइफ पेश किए। शहजादी उन तहाइफ से बहुत खुश हुई और उन्हें अपने खजानची के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि उनकी कीमत फहरिस्त के मुताबिक अदा कर दी जाए। नुमान सैयाह दिल ही दिल में खुश था कि इसी बहाने उसे दोबारा फिर दरबार आने का मौका मिल जाएगा, लेकिन महल से वापस आकर उसकी हालत बदल गई। वो हर वक्त शहजादी के ख्याल में गुम रहने लगा। अगले रोज वो दोबारा दरबार में हाजिर हुआ। इस मर्तबा शहजादी ने सब हाजरीन को रुखसत करके उसे तन्हाई में बुला लिया। उससे नरमी से गुफ्तगू की और पूछा कि इन तहाइफ पर उसे कितना मुनाफे मतलूब है। नुमान सैया ने आजिजी से जवाब दिया कि उसका असल मकसद तजारत नहीं बल्कि शहजादी की ज़ियारत थी जो अब पूरी हो चुकी है, इसलिए वो खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता है। शहजादी उसके खुलूस और सादगी से मुतासिर हुई और फरमाया कि उसके तमाम तहाइफ की पूरी कीमत अदा की जाएगी। साथ ही उसे एक निहायत अहम जिम्मेदारी सौंपी। उसने एक मुहर बंद खत और अपनी अंगूठी देकर कहा कि दिलकुशा नामी बाग में जाकर खुसरो नामी शख्स के हवाले ये अमानत कराए और उसका जवाब लेकर फौरन वापस आए। नुमान सैया बाग में पहुंचा तो देखा कि खुसरो एक बहादुर सिपह सालार की तरह मसले महाफिजों के दरमियान बैठा है। उसने अंगूठी देखकर नुमान को बाग के अंदर भेजा, जहां एक दरख्त से लटके आहिनी पिंजरे में एक निहायत खूबसूरत नौजवान कैद था। नुमान ने उसे खत दिया मगर जवाब मिलने से पहले ही हबशी सिपाहियों ने हमला कर दिया। उन्होंने नुमान को बेरहमी से जख्मी करके

कर दिया। जब उसे होश आया तो सिपाही उसे उठाए ले जा रहे थे। उनकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि पिंजरे में कैद नौजवान दरअसल इसी सल्तनत का असल वारिस शहजादा है। मरते वक्त उसके वालिद ने अपने भाई को वसीयत की थी कि बेटे के बालिग होने तक सल्तनत संभाले, फिर अपनी बेटी का निकाह उसी शहजादे से कर दे और हुकूमत उसके हवाले कर दे। लेकिन चचा इख्तदार के लालच में वादा भूल गया, शहजादे को दीवाना करार देकर कैद कर दिया और अपनी बेटी को भी उससे जुदा कर दिया। हालांकि दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। नुमान सयाह ने इसरार किया कि वो आगे का मंजर भी देखना चाहता है। सिपाहियों ने उसे छिप कर देखने की इजाजत दे दी। दरबार में बादशाह ने मलिका को हुक्म दिया कि वो अपने महबूब शहजादे को अपने हाथ से कत्ल करे, मगर जब मलिका उसके करीब पहुंची तो तलवार फेंक कर उससे जा मिली। शहजादे ने भी मोहब्बत का इजहार किया। ये मंजर देखकर बादशाह सख्त गजबनाक हुआ। इसी दौरान वजीर ने शहजादे को कत्ल करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन अचानक गैब से एक तीर आकर उसकी पेशानी में लगा और वो वहीं हलाक हो गया। इस गैर मामूली वाकये के बाद शहजादे को दोबारा पिंजरे में कैद कर दिया गया और बादशाह वापस चला गया। इसी दौरान मलिका ने नुमान सयाह को अपने पास बुलवाया, उसके जख्मों का बेहतरीन इलाज करवाया और एक माहिर तबीब की निगरानी में उसे मुकम्मल सेहत याब करवा कर दोबारा अपने हुजूर तलब किया और उसकी वफादारी से खुश होकर उसे कीमती खिलत, बहुत सा माल उजर और इनामात अता किए। उसके बाद नुमान ने अपने साथियों को वतन वापस भेज दिया, गुलामों को आज़ाद कर दिया और खुद उसी पहाड़ पर एक इबादत गाह बनाकर पत्थर के बुत की परस्तिश और मलिका की याद में जिंदगी गुजारने लगा।

नुमान सियाह की दास्तान सुनकर मुल्क अजम का शहजादा भी मलिका की जस्तुजू में मुल्क फरंग रवाना हुआ। उसने फकीराना लिबास इख्तियार किया, तवील सफर की सोबतें बर्दाश्त की और आखिरकार फरंग पहुंचकर अपनी मंजिल की तलाश शुरू की। कई दिन तक वो शहर की गलियों और बाजारों में सरगर्दा रहा, मगर मलिका तक पहुंचने की कोई सूरत न बन सकी। एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी मुलाकात एक बहादुर नौजवान से हुई, जो हर माह एक ताबूत उठाए अपने आका का मातम किया करता था। उस नौजवान ने बताया कि ताबूत में उसी मजलूम शहजादे की मैयत है जो कभी पिजरे में कैद था। जालिम वजीर ने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन उसी वक्त उसने भी वजीर को उसके जुल्म की सजा दे दी। अब वो हर माह उस शहजादे की याद में सोग मनाता है। शहजादे ने भी उसे अपना सारा हाल सुनाया तो वो उसकी सच्ची मोहब्बत और बेलौस जज्बे से मुतासिर हुआ। उसने वादा किया कि वो उसे मलिका से मिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चुनाचे एक रात वो शहजादे को शाही बाग में ले गया, जहां मलिका अपने चंद खास खादिमों के साथ आई। नौजवान ने शहजादे की वफादारी, मोहब्बत और कुर्बानी का जिक्र किया। मलिका ने जब ये दास्तान सुनी तो फौरन शहजादे को अपने सामने बुलवा लिया और शहजादे से कहा कि वो इस कैद बंद की जिंदगी से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वो उसे अपने साथ किसी दूर दराज मुल्क ले जाए, जहां दोनों आजादी और सुकून से जिंदगी गुजार सके। शहजादे ने फौरन उसकी ख्वाहिश कबूल कर ली और दोनों रात की तारीकी में महल से निकल पड़े, मगर आगे उनके लिए आजमाइशों का एक नया सिलसिला मुंतजर था।

सुबह होते ही पूरे शहर में तहलका मच गया। शाही मुनादियों ने ऐलान कर दिया कि मलिका महल से गायब हो चुकी है। सिपाहियों को हुक्म मिला कि शहर का गोशा गोशा छान मारा जाए, हर घर की तलाशी ली जाए और जो शख्स मलिका का सुराग दे उसे 1000 अशफियां और शाही खिलत से नवाजा जाए। इसी हंगामे के दौरान एक चालाक बुढ़िया फकीरनी का भेस बदल कर हवेली में दाखिल हुई। उसने अपनी गुर्बत, बेटी की बीमारी और बेबसी की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुनाई कि मलिका का दिल पसीज गया। मलिका ने उसे खाने के लिए नान और कबाब दिए, साथ ही अपनी एक अंगूठी भी अता कर दी ताकि वो उसे फरोख्त करके अपनी जरूरत पूरी कर सके। मगर बुढ़िया का मकसद खैरात लेना नहीं बल्कि मलिका का सुराग हासिल करना था। वो अंगूठी हाथ में लिए जैसे ही बाहर निकली, ऐन उसी वक्त हवेली का मालिक बहादुर सिपाही बहजाद खान शिकार से वापस आ पहुंचा। उसने खुला दरवाजा और बुढ़िया की मशकूक हरकत देखते ही सारा माजरा भाप लिया। उसने बुढ़िया को गिरफ्तार कर लिया और यूं एक बड़ा खतरा टल गया। फिर बहजाद खान ने शहजादे और मलिका को तसल्ली देते हुए कहा, अब आप दोनों बेफिक्र हैं, जब तक आप इस गरीब खाने में हैं कोई आप तक नहीं पहुंच सकता। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी हिफाजत करूंगा। बहजाद खान की बेमिसाल वफादारी, जुर्रत और इखलास ने शहजादे को बेहद मुतासिर किया। उसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, बहजाद खान तुमने आज दोस्ती और वफादारी का हक अदा कर दिया। अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। इस तरह बहजाद खान की वफादारी और जानिसारी की बदौलत शहजादा और मलिका कई माह तक सुकून से जिंदगी गुजारते रहे। मगर एक दिन शहजादे को अपने वतन और वालिदैन की याद बेहद सताने लगी। उसकी उदासी देखकर बहजाद खान ने वजह पूछी। शहजादे ने कहा कि अब वो अपने वालिदैन की कदमबोसी करना चाहता है। जना जाने उसकी जुदाई में किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। ये सुनकर बहजाद खान ने फौरन वापसी का इंतजाम किया। उसने उम्दा घोड़े तैयार किए, खुद हथियारों से लैस हुआ और शहजादे और मलिका को साथ लेकर रवाना हो गया। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर बहजाद खान ने बादशाह को ललकारा कि अगर ताकत है तो अपनी बेटी को वापस ले जाए। ये खबर महल तक पहुंची तो बादशाह ने लश्कर रवाना कर दिया। मगर बहजाद खान तने तनहा दुश्मन के सामने डट गया। उसने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पहले दोनों सिपह सालारों को कत्ल किया, फिर खुद बादशाह की फौज को भी शिकस्त दे दी। दुश्मन पसपा हो गया और तीनों बखैरियत मुल्क अजम की सरहद तक पहुंच गए। शहजादे ने अपनी आमद की इतला वालिद को भेजी। बादशाह बेहद खुश हुए और तमाम अमीरों के साथ इस्तकबाल के लिए दरिया के किनारे पहुंच गए। शहजादा शौक मुलाकात में बाप के गले जा लगा, लेकिन ऐन उसी लम्हे तकदीर ने एक और आजमाइश खड़ी कर दी। मलिका का घोड़ा बेकाबू होकर दरिया में जा गिरा और मलिका तीज भंवर की नजर हो गई। बहजाद खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी, मगर वो भी उसी भंवर में गुम हो गया। गोताखोरों ने बहुत तलाश की मगर न मलिका का सुराग मिला और न बहजाद खान का। इस हौलनाक हादसे ने शहजादे को तोड़ कर रख दिया। वो दुनिया से बेजार हो गया और दरवेश का भेस इख्तियार करके दरिया किनारे आवारा फिरने लगा। एक रात उसने खुद भी दरिया में डूबकर जान देने का इरादा किया, मगर उसी लम्हे एक नकाब पोश सवार नमूदार हुए। उसने शहजादे को खुदकशी से रोका और खुशखबरी दी कि मलिका और बहजाद खान दोनों जिंदा हैं, वक्त आने पर उनसे मुलाकात जरूर होगी। फिर उसने शहजादे को रोम जाने का मशवरा दिया, जहां उसकी मुलाकात दूसरे दरवेशों से होगी और इसी सफर में उसकी मुराद भी पूरी होगी। इसी उम्मीद के साथ तीसरे दरवेश ने अपनी दास्तान खत्म की। सामईन अजीज, इस तरह तीसरे दरवेश ने अपनी सरगुजश्त बयान की। इस दास्तान में मोहब्बत की सच्चाई, बहजाद खान की बेमिसाल वफादारी और तकदीर के अनोखे खेल ने हर सुनने वाले को मुतासिर किया। आखिर में नकाबपोश सवार की दी हुई उम्मीद ने दरवेश के दिल में फिर से जीने की ख्वाहिश जगा दी। यूं तीसरे दरवेश का किस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, मगर

0: इसके साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि बाग बहार की ये दास्तान आपको पसंद आई होगी और आप आइंदा भी इसी मोहब्बत के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे। मुझे यानी शाज़िया खान को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगी। आदाब।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में सुनिए हमारा लोक संगीत कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सतीश चंद्र यादव और साथी। कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में आइए सुनते हैं ये लचारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार थे सतीश चंद्र यादव और साथी। इनके गाय लोकगीत अब दिन में 1:45 पर और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होते हैं आपकी सेवा में कार्यक्रम झनकार।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

जी हाँ श्रोताओ, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @aarvaranasi। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मना ही
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में आप सभी सुनने वालों का स्वागत। कार्यक्रम का आरंभ घरौंदा फिल्म के गीत से।

इस खूबसूरत अंदाज को अभी आप सुन रहे थे घर अंदा फिल्म से, रूला रेला की आवाज़ थी। गीत लिखा था नश्क लयालपुरी ने और संगीत जयदेव का था। रूना लैला की इस आवाज़ के बाद कार्यक्रम में अगली आवाज़ है किशोर कुमार, मुकेश, रफ़ी और लता की।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर और मुकेश की मिली जुली आवाज़ों में ये था फिल्म अमर अकबर एंथोनी का गीत। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और ये है लता मंगेशकर की आवाज़ में बॉबी फिल्म का गीत। संगीत एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत आनंद बख्शी का।

प्यार के हजारों रंग को बयां करता ये कार्यक्रम आप झनकार सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और ये अगला गाना है जीना तेरी गली में फिल्म से, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, रविंद्र रावल का लिखा गीत, बाबुल बोस का संगीत।

और कार्यक्रम का ये अगला गीत है हीरो फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम का ये अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और नितिन मुकेश की आवाजों में, ईश्वर फिल्म का ये गीत। अनजान ने इस गीत को लिखा, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

के वाराणसी केंद्र के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम का ये अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और नितिन मुकेश की आवाजों में, ईश्वर फिल्म का ये गीत। अनजान ने इस गीत को लिखा, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक दूजे के लिए, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज, साथ में है एसपी बाला सुब्रमण्यम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

और ये गाना हमने लिया है फिल्म लव स्टोरी से। लता मंगेशकर के साथ अमित कुमार की आवाज़ इस गीत में।

और झनकार कार्यक्रम का यह आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म ज्वेल थीफ से, लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों की आवाज़ें, सचिन देव बर्मन का संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आपके ईमेल संदेशों पर आधारित है। पहले से आपके बहुत सारे ईमेल संदेश हमारे ईमेल आईडी पर आ चुके हैं और उनमें से ही हमने चुने हैं गीत। तो अपनी पसंद के गीत आप आज के इस कार्यक्रम में सुनेंगे और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो हमसफर अंजना झा। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और ये कार्यक्रम का जो पहला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है गुलामी। फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम भी हम आपको बताए देते हैं। ये ईमेल संदेश ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और निर्मला त्रिपाठी। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान और सबीहा अंजुमन खान। फरमाइश आई बोरखेरा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक और चेतन नाहटा की। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। ऐसे गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मोताला महाराष्ट्र से कुमकुम, गुड़िया, विजय सुरलकर, रतनमाला और इनके परिवार के सभी सदस्य। बालोद छत्तीसगढ़ से देव नारायण साहू, कुमारी योगिता, गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई और त्रियांश कुमार साहू। तो चलिए आपको सुनवाई देते हैं आपकी ही पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम गुलामी।

आप सुन रहे थे गुलामी फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे सावन को आने दो फिल्म से। जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजें हैं। पसंद आप सभी श्रोताओं की बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके सभी मित्रगण। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक। ये संदेश आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता का। ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मजनू कटेला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। ग्राम पंचायत सिरसला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक, सचिन चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्य। धानोरा विटाली नांदुरा बुल्डाना महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। और इसी गीत की फरमाइश यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष और विनोद खड़से।

सावन को आने दो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और अब चलते हैं अगले गीत की तरफ। कुदरत फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है। ये पसंद मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला विशाल। मलकापुर से नारायण इंग्लिश, सोपान तायडे, आशीष। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, अहमदनगर वजरडीहा वाराणसी से। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। लछनपुर छत्तीसगढ़ से

रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित की। चलिए आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

और इस गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल और आशुतोष जायसवाल। जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी और बादशाह मुलानी, आपका ये संदेश, ये फरमाइश आई है। फुल चिंचोली, तालुका पंढरपुर, शोलापुर से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आज मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया, पवन राजे जाधव। राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। ये फरमाइश है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से राज एसटी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष, योगी, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और इनके मित्रगण। और ये संदेश है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आपके ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है। और अब आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम का अगला गीत। अब जो गीत आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की गम्हरिया, जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। ग्राम पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। सिंधी बुजरक महाराष्ट्र से किशोर वडलकर, शुभम वडलकर, पुन्नू वडलकर। पद्म टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, अंशिका, आदित्य और अंजलि। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके परिवार के सभी सदस्य। तेलंगाना निजामाबाद से शेख हल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख,

शेख रहीम मुन्ना। और इसी गीत को सुनना चाहा पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस और कार्यक्रम का अगला गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवन नाथ मालवीय, अनमोल मालवीय, श्लोक और परिवार के सभी सदस्य। कोलकाता से रेखा वसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, अन्विका तनुश्री गुप्ता। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन। ग्राम डाकघर निम्नाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कर्मजीत कौर।

पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरीबा हबीबा। चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीता देवी, मुन्नी देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश। वंदना नगर इंदौर उत्तर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी। ये संदेश आया गांधी चौक बारमेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान और खलीफों की बाबड़ी से खुदा बख्श। अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा का ये संदेश है पानीपत हरियाणा से। सुनवा रहे हैं ये गीत, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

जसपाल सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म का गीत। और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाएंगे अखियों के झरोखे से फिल्म का गीत हेमलता की आवाज में। और इन दोनों ही गीतों के लिए मिली जुली फरमाइशें हमारे इन सभी श्रोताओं की। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह।

उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका मुंगेली छत्तीसगढ़ से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। बटिंडा रोड मडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई, नूर, आयशा अहमद, इमरान अहमद, जूही इकबाल, सदफ आरजू, इकबाल अहमद और इनके परिवार के सभी सदस्य। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफा नवाज और बेबी चाहत। कुछ और फरमाइशें इस गीत के लिए। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रव्या। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय और बेबी किट्टू। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सीटी दीवाना। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अब सुनिए ये गीत, फिल्म का नाम अखियों के झरोके से।

अखियों के झरोखे से फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस

समाप्त करने की अनुमति दीजिए रेडियो हम सफर अंजना झा को। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओं, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में

0: पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी।
1: जी।
0: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
1: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
0: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी।
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी।
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी।
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी।
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
5: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी।
5: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
5: जी।
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
5: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
5: जी
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है। पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी।
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
5: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का

0: आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
1: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
0: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए।

0: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
3: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: आप जैसे किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ो।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे पीछे हो
4: जाओ। आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये

0: देखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं। ठीक
1: जी मास्टर।
0: लिखो फिर, सब लिखो।
2: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को। पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
3: दीदी।
4: बोलो मालती।
3: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
4: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
3: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
4: ठीक।
3: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
4: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
3: जी।
4: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
3: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
4: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते। नमस्ते बच्चों। नमस्ते
7: दीदी। ये,
6: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
8: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने एक बगीचे से लाया है।
6: अच्छा
9: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
6: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
7: गुलाब।
6: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
5: दीदी मैं बताऊँ?
6: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
7: गुलाब, गेंदा, और चमेली।
6: चमेली,
7: सूरजमुखी।
6: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
6: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
2: जी।
6: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
6: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
6: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में

0: देखिए पक्षियों को गिनते हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुगम संगीत आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं हनुमान प्रसाद, इनकी आवाज में आज आप सुनेंगे भजन। तुलसीदास की रचना सुनिए।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भजन। कलाकार हैं हनुमान प्रसाद। इनकी आवाज में अब सुनिए सूरदास की रचना।

ये था आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे हनुमान प्रसाद, इनकी आवाज़ में आज आप सुन रहे थे भजन।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वॉयलिन वादन। कलाकार हैं डॉक्टर रामचंद्र भागवत। राग है भीम पलासी। तबला संगति किशोर कुमार मिश्र की।

0: अभी आप सुन रहे थे वॉयलिन पर प्रस्तुत राग भीम पलासी। कलाकार थे डॉक्टर रामचंद्र भागवत। तबले पर संगति किशोर कुमार मिश्र की थी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: बिम्स्टेक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स, क्षेत्रीय

0: सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। PV सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले कार्यक्रम विवरण में आपको देने जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 4:00। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा रात्रि 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी किशोर

पूरी अमोनकर का गायन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 का। किसान भाई अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनेंगे 6:30 पर, जिसमें मूंगफली की उचित उन्नत उत्पादन तकनीक इस विषय पर डॉक्टर प्रतीक सनोडिया से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। इस बातचीत के साथ ही किसान भाई सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे सतीश चंद्र यादव और साथी। इन्हीं के गाए लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। बहनें अपना अंगनैया कार्यक्रम सुनेंगे 1:15 पर, जिसमें आज बहनों को सुनवाएंगे मन, योग और आत्मबोध। इस विषय पर विनोद कुमार सिंह से मनु सिंह की बातचीत। धरती के गीत कार्यक्रम का समय होगा 5:00 का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजस्थानी गीत। कहकशा का प्रसारण समय 2:30 का। फिल्म संगीत सुनिएगा 6:10 पर 7:00। रसरंग कार्यक्रम में 7:31 पर, रसमाधुरी कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर और आपकी पसंद कार्यक्रम रात्रि 10:00 प्रसारित होगा। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और आप सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार अजय यादव, जिनके पिता का नाम है छोटे लाल यादव, ये निवासी हैं मिश्रपुरा सैयद राजा जनपद चंदौली के। अजय यादव 26 जून 2026 से लापता हैं। अजय यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार, इनकी उम्र है 51 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट 5 इंच और इनका चेहरा लंबा है। अजय यादव के बारे में विशेष बात यह है कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो पुलिस अधीक्षक सैयद राजा जनपद चंदौली को सूचित करें और सूचना के लिए नंबर है 7394085505। नंबर एक बार फिर से सुन लें 7394085505। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त सूचना के अनुसार ममता देवी, जिनके पति का नाम है बाबूलाल गुप्ता, ये निवासिनी है बरठी थाना सकलडीहा जनपद चंदौली की। ममता देवी 25 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 25 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा और लंबाई है 5 फिट। अगर ममता देवी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष सकलडीहा चंदौली को सूचित करें और सूचना के लिए नंबर है 9753490388, 9753490388। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरें आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से।

0: के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
1: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
2: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के लिए मरकजी काबीना की तरफ से मंजूर शुदा प्रोजेक्टों का खैर मकदम किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ग्रैंड काशी काबिल रसाई काशी के लिए वक्फ ये प्रोजेक्ट अकीदतमंदों के सफर को मजीद काबिल रसाई बनाएंगे, ट्रैफिक को फिर से मुतहरिक करेंगे और सयाहत तजारत और तवानाई डालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में शुमाल मशरकी रेलवे के ऐश बाग जंक्शन का वज़ीर आज़म अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर के 75 तज़ेन और आराई शुदा रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह आज पंजाब के जालंधर कैंट स्टेशन से होगा। 20 रियासतों में फैले हुए 75 अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक और अहम कामयाबी की निशानदेही करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन की तामीर नौ के प्रोग्रामों में से एक है। तकरीबन 1,570 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा इन स्टेशनों को जदीद और मुसाफिरों के लिए साजगार सहूलियात में तब्दील कर दिया गया है। विरासत भी तरक्की भी के जज्बे के तहत इन जदीद शुदा स्टेशनों में मकामी सकाफत विरसे और फन तामीर की अक्कासी करने वाले अनासिर शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सद ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि अजीम जुलूस के दौरान महाप्रभु श्री जगन्नाथ, चक्रराज, सुदर्शन, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अकीदतमंदों से मिलने निकलते हैं। सदर जमहूरिया ने दुआ की कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से मुल्क और उसके लोगों को हमेशा खुशी, अमन और खुशहाली मिले। वहीं भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आज राजधानी लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर शानदार तरीके से मुनक्किद की जा रही। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में निकलने वाले इन जुलूसों के पेश नज़र लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए खसूसी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है कि आम लोगों को ट्रैफिक की किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। एक कौम एक इंतखाब से मुतालिक आईनी तरमीमी बिलों पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के 3 रोज़ा बहस का कल लखनऊ में अख्तिताम हुआ। आखिरी दिन कमेटी ने रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और कानून और सियासत के माहरीन से बात की। उसने पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया के सरकर्दा शख्सियात से भी बातचीत की। कमेटी के जाने से मौसूल होने वाली तजावीज पर आने वाले मराहिल में गौर किया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी ने 10 रियासतों का दौरा किया है और मुख्तलिफ शोबों में लोगों से बहुत से अहम मशवरे हासिल किए हैं और जो सिफारिशात कौमी मफाद में है उन्हें पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। कबरजी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से बातचीत की। बातचीत के दौरान गवर्नर ने कमेटी के अराकन के साथ इंतखाबी निजाम, इंतखाबी असलाहत और खवातीन की सियासी शिरकत समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के तकरीबन 500 ग्राम पंचायत प्रधान आज वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पंच सम्मेलन में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। सम्मेलन का मकसद ग्राम पंचायतों को ज्यादा बाख्तियार, शफाफ और नतीजा खेज बनाना है और रामजी एक्ट 2025 के दफात और वीबीटी के साथ साथ मकासद के बारे में अवामी नुमाइंदों के समझ को मजबूत करना है। सम्मेलन के मेहमान खसूसी वजीर मुमलकत बराए देही तरक्की कमलेश पासवान, उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य होंगे। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से 350 ग्राम प्रधान, बिहार से 75, झारखंड के 50 और उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधान शिरकत करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन टिकट बुकिंग को आसान बनाने के वेबसाइट के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने इस साइट का एक नया वर्जन जारी किया है। वर्जन में 4 बड़ी असलाहत की हैं। इससे पहले कोई गैर जरूरी कैप्चा, पॉपअप या दीगर खल्फिशार नहीं है। दूसरा, मुसाफिर तमाम क्लासों में सीट की दस्तयाबी दे सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने के लिए कम मराहिल दरकार हैं और वेबसाइट अब मुसाफिरों की मालूमात को महफूज करेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा। मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। बहने सुने अपना कार्यक्रम अंगनैया

0: अंगनी या कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते आ मुनक्का तोरो के नमस्ते हो। बड़ा दिन पर भेंट करे अइलू हो।
1: अरे नमस्ते ये दीदी, हम कहीं अपन कार्यक्रम सुने वाले भी बहिन लोगन के नमस्ते हमरे ओरी से। आ सही कहत हो, बड़ी दिन तो हो ही गरल है, बाकी का करल जा। हमार तो छोड़ा दीदी, तोहरे लगे इतना काम बा कि घरों जाते तू नहीं देखे, तू एकदम एकदम व्यस्त रहल हो। तू
0: देखा हो न, कहल जाला ना कि खलियर न बैठे के चाहिए। जब मन ही खलियर रहेला ना तो दिमाग में उल्टा पुल्टा बहुत तरह का ख्याल आवेला।
1: हाँ हाँ ये
0: तो
1: बात
0: ये
1: सही।
0: कुल सोच से तो अलग है कि भाई कामे में अजुरायल रहा, जितना हो सके दूसरे के भी वही में शामिल कैला, जैसे उन्हों लोगन का समय सही ढंग से बीते और अपनों।
1: बात एकदम सही कहलू है। कहल गया ना कि जब अभी कहलू है ना कि खाली रहला तो इधर उधर दिमाग घूमला, तो सही बात है, व्यस्त तो रखें के चाहिए। और दूसर बात इहो है ना कि बहन लोगन से तो हम पहले ई भुला गेली कहे के कि देखा आज हो लाली दीदी एक खास दिन है ना, तो बधाई दे दिहल जा। हम जाना थी कि बहन लोगन भी समझ गए हैं आ दीदी तो पहले समझ गए हैं।
0: अरे ननकन सवेरे से आगे पीछे डोलत हवन कि हमके
1: हाँ
0: चले के है मेला, नान खटाई खरीदे के है, ही खिलौना खरीदे का, खिलौना खरीदे के आ हमहन तो अपन श्रद्धा पुरावे जाइला हो,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ननकन के तो मेला घूमे का शौक है। माने बधाई दे थो तू आज के रथ यात्रा मेला का त्योहार का दिन अब शुरू हो था।
1: एकदम शुरू हो था। आजू से लेके ही देखा, आज रही काल रही परसों रही, आ एक ही लोगन बड़ी उत्साह के साथ मनावा ना। आ तू नान खटाई के बात करत हो दीदी, तो देखा मान्यता हो कि ये मेला में जे जाला ना वो प्रसादी के रूप में नान खटाई जरूर खरीद के ले जाला, आ घरे में जे नाही गयल बा ओके जरूर खियावला कि ऐसे घर में सुख समृद्धि पूरा जौन है कि बरिस बनल रहो।
0: अरे जब इतना जानत हो ज्ञान का बात तो फरिया के बता दे तू कि भाई रथ यात्रा होला का एमन का कइल जाला और कौने कौने तरह से एकर पूजा होले।
1: देखा पूजा का बात तो हम कहब कि अपने लाली दीदी से बढ़िया कोई न बताई, लेकिन बात जहाँ तक हो था ये मेला का, तो एमन देखा भगवान जगन्नाथ उनकर जौन बलदाऊ भैया हुआ और उनकर जौन बहिन हैं सुभद्रा, ये लोगन का बड़ी विधि विधान से देखा पूजा होला। और ये भी मान्यता है कि ये लोगन एक रथ पर बैठ के अपने मौसी के घरे जात हुए।
0: आ ए रथ के जे छू के अपन मनोकामना कह देवेला ना, ई मानल जाला कि उ मनोकामना अगर सच्चे दिल से मानल जाए तो ई भगवान लोगन पूरा भी करेलन। इतना इन लोगन में शक्ति है। आ सबसे बड़ी बात तो शक्ति अपने मन में होले कि श्रद्धा भाव से तो तू केहू के कुछो कह दा तो पूरा हो जाए।
1: एकदम तो वह होला कि अरे देखा जब पूरा हो जाला तो होला ना कि वो कहानी देखा उनकर बात सही हो गल, बात सही हो गल। आ देखा मेला का तो भाई सब सोचला, घरे के बड़ भी सोचा ना कि मेला में जाए परिवार के साथे घूमे टहरा, लेकिन केहू केहू ऐसन भी हो दीदी जे कि मेला में नहीं जा सका था, तो ऐसने लोगन के ई मेला का देखा आँखों देखा जौन है कि पूरा वहाँ का कहानी हमन अपने रेडियो के माध्यम से लोग के सुनाई ला।
0: रेडियो का बात कहत हो ना तो कहीं की रेडियो आजुए से नाही, ना जानी कौने जमाना से हमन के हित का काम करत हमन से जुड़ल है। मानी कि कितना कितना लोगन का कहानी, जे सीमा पर जवान लोगन रहलन उनकर कहानी, जे गांव घरे में लोगन बहनी लोगन काम करत हैं उनकर कहानी, खेते खलियान में भैया लोगन करत हुन उनकर कहानी, खाली कहानी नाही नया नया जानकारी का बात भी हो, इतना नीक से रेडियो के माध्यम से प्रसारित कइल जाला। आ सुन के बहुत अच्छा लगेला जब भैया बहनी लोगन का पहले तब पाती आवे और अब तो जैसे डिजिटल रेडियो हो गए ना तो मेल आवेला, वो ये मेल पर जब सुने के होला कि देखा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगल या इनकर प्रसारण बहुत अच्छा लगल, तब जानला कि इतना जेरा गदगद हो जाएला ना कि पूछे के ना।
1: एकदम सही कहलू है दीदी, गदगद तो और हो जाला तब। और देखा दीदी एक बात ये कहे के हो कि पहले हमन छोट छोट रही

0: जाता जब बाजा बजा लगा तो सोचल जा कि अरे मन इकुल मरद जौन है कि मन सेधु आ मेहरारू कैसे बोलन है, मन कैसे जौन है कि घुसन है। लेकिन आज का दौर इतना आगे हो गया है, डिजिटल तकनीक का जौन दौर हो गया है दीदी, ए मन अपने पॉकेट में रख करके जौन मोबाइल है एकरे माध्यम से लोगन अपन पसंदीदा जौन है कि स्टेशन लगा करके सुनत हुअन। और इतना नहीं दीदी, देखा चाह तो कौनो भाषा में वो सुन सके ना, आ कहीं भी रहा अपने खेते डाड़े रहा काम धंधा करत रहा सुनत हुअन। आ जौन डिजिटल तकनीक रेडियो का बात होता तो एमन तो अब अपन जब फरमाइश करन ना लोगन ना तो उ लोगन का नाम भी देखाला, कहाँ से फरमाइश करत हुआ ये भी पता चल जाला, आ जौन गाना सुनल चाहत हुअन ओकर पूरा जानकारी पता चल जाता। तो कितना जौन है कि तकनीक के माध्यम से हमहन के रेडियो आगे बढ़ गला। और इतना हम लोग हम तो कहब कि हम तो इहो बताई बहन लोगन के कि आपन भी कार्यक्रम वो कहीं भी रहा आप तो देखा एप्स के माध्यम से भी तो सुने के मिल जाता।
1: अरे जन मोबाइलिया हमन लेके घूमत हई तई मोबाइलियो में त लगाए के, जो तू ऐप का बात कहलू है लगाए के मने कत्तो रहे सुन लेता भाई, गाड़ी
0: बिल्कुल
1: में रहे चाहे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवावा था तो सुन लेता। अब पहले तो रहे ना कि जैसे जब गवा घरे में जौन उनकर सास रहलिन मैना जी जी का, तो वो कहें कि अरे हमार पतोहिया जाके बोले ले बहुत ऊंचासे से बोलत हुई कि उतना दूरी से बोला था तो इतना सुनाई देता।
0: सही
1: तो
0: बात
1: ई
0: है।
1: तो है तकनीक का प्रभाव कि ऐसन आविष्कार हो गई ला, ऐसन तकनीक आ गई ला कि का से का हो जाता, कितना मन आगे बढ़ जाते। आ ई खुशी का बात भी हो, आ सबसे बड़ी खुशी का बात तो ई है कि मनसेधु के साथ साथ महिला लोगन भी आगे बढ़त हैं, आत्मनिर्भर बनत हैं। अब खाली घरे के चूल्हा चौका तक उनका जीवन नहीं रह गई ला, घरे के बाहरे निकल के आवत हैं भाई, काम धंधा करत हैं, हर तरह के जो निर्णय है मन अपन सहयोग देते हैं, अपन विचार रखते हैं।
0: एकदम बात सही कहलू है। और यही में जौन है ना कि आपन जौन डिजिटल हो तकनीक हो ये बहुत बढ़िया भूमिका निभावत हो। तो जौन बहन लोगन खलिहर कह जाता कि खाली बैठे नहीं दोपहरिया बितावथिन सूत के, और सही बात है अब वो समय को सदुपयोग करथिन आत्मनिर्भर बन के। दीदी हो बात कही करे लगी ला जाना तो हमहन भुला जाए ला जा कि अपने कार्यक्रम में अभी आगे और भी चीज लेके आ ले जा। तो पहले है जौन है कि हो जाओ जानकारी के बाद एकरे बाद फिर बहन लोगन से आगे बतियावल जाई
1: मानी
0: और
1: सने सुनवा दे।
0: सनेस का। हाँ
2: डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227।

0: पाँच आठ
1: शून्य पाँच चार दो दो दो सात छः पाँच आठ।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: शून्य पाँच चार दो दो दो सात छः पाँच आठ।
3: दीदी
4: हाँ हो
3: सनेस तो हो गया और कहे कि ये है ना कि देखा जब मन खुश होला दीदी मन में कौनो तरह का दिक्कत या फिर कौनो बात का चिंता नहीं हो तब बड़ से बड़ समस्या का सामना बड़ी आसानी से हो जाला, हल बड़ा आसानी से निकल जाला।
4: आ कुल चीज तो मने से है हो कि मन जौन है वो अगर सही रही तो सब सही रही तो काहे नहीं पर निके के बातचीत बहनी लोगन के सुनवा दी हल जाए।
3: एकदम ही पूछे के नहीं हो तो हम लोग भी बहन लोगन के लिए लेके आ लिए निके का बत कही कि मन और योग और यही के साथ जौन आपन आत्मिक बोध अंदर का जौन हो एकरे बारे में जानकारी लेके विनोद कुमार सिंह से बतियौले हैं मनु सिंह। बहन लोगन ये बत कही सुने।
5: बहनों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा इंसान तनाव से परेशान है और ये तनाव हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर रहा है। अपने जीवन को तनाव से मुक्त करने के लिए और अपने मन को शांत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज इस विषय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद जी जो हमें इस बारे में बताएंगे। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने कार्यक्रम अंगनैया में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी आपका।
5: आचार्य जी सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कहा जाता है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है इसका वास्तविक अर्थ क्या है?
6: कहते हैं मन परिस्थितियों से नहीं उनके प्रति अपनी सोच से प्रभावित होता है। एक घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर घटना में नहीं बल्कि मन की स्थिति में होता है। इसलिए जब मन नकारात्मकता भय और मोह में उलझता है तो हमारा मन बंधन में बंध जाता है और जब मन विवेक संतुलन और जागरूकता से भर जाता है तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
5: आपने ये बात बहुत सही कही है कि जब हमारा मन बंधन से मुक्त हो जाता है तो हमारे मुक्ति का जो रास्ता है वो खुल जाता है। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और पूछते हैं कि आज हर व्यक्ति सफलता चाहता है लेकिन शांति बहुत कम लोगों के पास दिखाई देती है, ऐसा क्यों है?
6: वजह यह है कि हमने अपने मन को साधने की कला ही अभी तक नहीं सीखी। जब तक हम अपने मन को साधेंगे नहीं, मन को एकाग्रचित करेंगे नहीं, तब तक हम सफलता से कोसों दूर रहेंगे। बाहरी सफलताएं हमें सुविधा दे सकती हैं, लेकिन आंतरिक शांति या हमें संतुष्टि तभी मिल सकती है जब अपने मन को हम संतुलित कर लें, साध लें। इसके लिए हमें योग आत्मचिंतन हमें संतुलित कर सकता है, हमें आत्मचिंतन करना भी होगा।
5: आपने बहुत अच्छी बात कही है कि योग और आत्मचिंतन भी जरूरी है क्योंकि हमारा मन तो तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो आचार्य जी जब आप योग की बात कर रहे हैं तो योग को अक्सर केवल व्यायाम समझ लिया जाता है, वास्तव में योग का जीवन में क्या महत्व होता है?
6: आजकल योग को लोग शारीरिक व्यायाम समझते हैं जबकि वास्तविक अर्थ होता जोड़ना अर्थात अपने शरीर को मन से मन को बुद्धि से और बुद्धि को आत्मा से जोड़ना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना ही योग है। जब मन अनावश्यक इच्छाओं भय क्रोध ईर्ष्या और चिंता से मुक्त होने लगता है तभी वास्तविक योग प्रारंभ होता है।
5: आचार्य जी आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है कि योग से हमारा मन हमारा तन दोनों ही स्वस्थ रहता है। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न करना चाहूंगी आपसे कि आत्मबोध की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जब हम आत्मबोध की बात कर रहे हैं तो हमारी बहनें ये जानना चाहेंगी कि आत्मबोध की यात्रा कहाँ से शुरू होती है।
6: आत्मबोध किसी पहाड़ जंगल या आश्रम से नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी से ही शुरू होती है। जब हम अपनी कमियों और गुणों दोनों को स्वीकार करते हैं और अपने विचारों को आत्मसात करते हैं तो हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने के प्रयास से ही आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है।
5: अभी आपसे बात हो रही है आचार्य जी कि हम अपने मन को अपने तन को योग और आत्मबोध के द्वारा कैसे और भी संतुलित रख सकते हैं। हमारी बहनें जो सुन रही हैं हमें आपकी बात उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही होगी क्योंकि हम सभी अब तक ये जानते थे कि योग केवल एक व्यायाम है
6: जी।
5: बल्कि

0: आपकी बातों से ये लगा कि योग एक ऐसा कीमती हीरा है हमारे लिए जो हमारे जीवन को अपने प्रकाश से भर देता है। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, एक और बात पूछना चाहूंगी आपसे। यदि हमारे श्रोताओं को आज से ही मन को शांत रखने के लिए एक अभ्यास अपनाना हो तो वो क्या हो सकता है?
1: जी, सर्वप्रथम सुबह उठे हम कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को दें, स्वयं को दें, अपने मन को दें, अपनी आत्मा को दें। सर्वप्रथम हम प्राणायाम करें। प्राणायाम दो तरीके से हो सकता है, एक तो हम भस्त्रिका भी कर सकते हैं और एक हम अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिन भर कम से कम ऐसा समय रखें जो मोबाइल और अन्य व्यस्तताओं से दूर रहकर केवल स्वयं के साथ हम अपना समय बिताएं। यही छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करते हैं और जीवन में शांति का अनुभव बढ़ाते हैं।
0: आचार्य जी, एक बात ये है कि हमारे ये जो व्यस्त जीवन हो गया है उसमें हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता है कभी कभी अपने लिए, और खास करके जो घर की गृहिणियां होती हैं उन्हें तो अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहता है कि वो अपने लिए खाना भी खा सकें। कभी कभी तो नाश्ता और सारी चीजें भूल जाती हैं, बाकी घर के कामों में लगी रहती हैं। तो उनके लिए योग कितना आवश्यक है और वो कौन सा ऐसा अभ्यास करें जो अपने काम के साथ साथ वो योग पे भी ध्यान दे सकें?
1: देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सुबह नियम से उठ करके सबसे मस्त चीज जो है प्राणायाम करें। प्राणायाम में कई तरीके के प्राणायाम होते हैं, कई तरीके के आसन भी होते हैं, हमें आसन भी करना चाहिए। खासकर प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें। उसके बाद कुछ योग होते हैं जैसे स्वस्थ शरीर को स्वस्थ करने के लिए पवन मुक्त आसन हो गया, ठीक है, मयूर आसन हो गया, ताड़ासन हो गया, इस तरह से, और वृक्षासन हो गया। इस तरह से हम आसन करें तो महिलाएं इसलिए स्वस्थ अपने को रख सकती हैं।
0: एक बात और पूछना चाहूंगी आचार्य जी कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पैरों में तकलीफ होती है, कमर में तकलीफ होती है, तो ऐसे कौन से आसन हैं जो वो आराम से या तो जमीन पर बैठकर या फिर कुर्सी पे बैठ के या फिर जहां पर वो अपना बिस्तर लगा हुआ है उस पे भी बैठ के कर सके? क्योंकि प्रौढ़ महिलाएं कभी कभी बिल्कुल भी आसन नहीं कर पाती हैं और वो हमेशा परेशान रहती हैं, मन में अशांति चलती रहती है और भी शारीरिक परेशानी रहती है, तो वो कहती हैं कि हम योग नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: महिलाओं के लिए सबसे अच्छी चीज है कि लेट जाए, उत्तान आसन लेट जाए और पैर को पीछे करके उठाएं।
0: अच्छा,
1: कम से कम 4 से 5 बार करें। और साथ साथ एक आसन होता है भुजंग आसन। भुजंग आसन अगर हम 5 से 10 बार करते हैं तो उससे कमर और कंधे वगैरह हमारे मजबूत होते हैं और दर्द वगैरह गायब होता है। और साथ साथ ताड़ासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारा जो बैकबोन होता है वो सीधा होता है। और साथ ही साथ वृक्षासन करने से भी थोड़ा ध्यान भी होता है और शरीर हमारी ठीक होती है, संतुलित होती है और मन हमारा शांत होता है।
0: तो जो महिलाएं, जो बहनें हमें सुन रही हैं, आचार्य जी उनके लिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर उनके पीठ में या पैर में कोई भी परेशानी है या दर्द है तो वो आराम से भी आसन कर सकती हैं। तो आचार्य जी एक बात और पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि बच्चे बड़े चंचल होते हैं और उनका शरीर ऐसे ही स्वस्थ रहता है, तो क्या उनको भी योग करना जरूरी होता है?
1: बिल्कुल, बच्चों के लिए देखिए पहले क्या होता था कि सुबह होती थी बच्चे खेलने निकल जाया करते थे। अब आज क्या है कि हर हाथ में मोबाइल हो गया, बच्चे भी दिन भर मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं। पहले आउटडोर गेम होते थे, आजकल इंडोर खेलने लगे मोबाइल के रूप में। तो अगर बच्चे बाहर जाके खेलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, उनका मन का भी विकास होता है, उनके शरीर का भी विकास होता है। तो जितना वो खेलें उनका विकास होगा, नहीं खेलेंगे तो आजकल की स्थिति आप देख रहे हैं कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं।
0: आजकल की स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई है, क्योंकि आपने सही कहा कि बड़ों के साथ साथ अब बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गया है और वो बाहर खेलना छोड़ दिए हैं और घर में ही मोबाइल को लेकर हर समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे क्या हो रहा है कि उनके मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन और मन की शांति जो है वो खत्म होने लगी है? तो हम जब बात करते हैं आत्मबोध की, आत्मचिंतन की, तो बहनें ऐसा क्या करें जो वो मतलब अपने मन की शांति पा सकें?
1: थोड़ी देर प्राणायाम करें, उसके बाद स्नान ध्यान करके प्रार्थना और ध्यान करें, दिन भर सत्य बोलने का प्रयास करें और किसी न किसी एक व्यक्ति की दिन भर किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। और छोटे छोटे अभ्यास, रात्रि सोने से पहले अपने दिन भर का जो भी कार्य किया उन्होंने उसका आत्ममंथन करें, अध्यात्म के प्रति अपनी रुचि दिखाएं, मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें। इससे हमारा मन शांत भी रहेगा और हम अपना जीवन संतुलित ढंग से जी सकते हैं।
0: आचार्य जी, जिस तरह से हमारे शरीर के लिए योग की आवश्यकता होती है उसी तरह से हमारे मन को शांत रखने के लिए ध्यान

0: भी आवश्यकता होती
1: जी
0: है। तो आप हमारी बहनों को ऐसा क्या बताना चाहेंगे कि वो अपना मन शांत रखें, और जब मन शांत रहेगा तो उनका मन भी हर काम में लगेगा।
1: जी सबसे बड़ी बात मनु जी है कि चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए।
0: हाँ
1: उठने
0: हाँ
1: के बाद उसे ध्यान अवश्य करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान उसे दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।
0: अच्छा
1: जी अगर वो ध्यान करता है तो उसका मन भी शांत रहता है, और साथ ही साथ हम कुछ अलग करने के लिए दिन भर की एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं। जी तो ध्यान हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है।
0: तो अपनी आंतरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें ध्यान करना बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: आवश्यक
0: होता
1: है।
0: है।
1: जी
0: तो आचार्य जी, आज आप आए और हमारी बहनों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी कि मन, योग और आत्म

0: हमारी बहनों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी कि मन योग और आत्मबोध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। इसके लिए आपका बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी आपका।
2: देखा हो, बड़ा नीके कबत कही रहला। बहनी लोगन सुनत रहलिन हाँ कि मन योग और अपन आपन जोन बोध होला, अपने आप के जाने के जोन क्षमता होला, वो कैसे कैल जा सकेला। विनोद कुमार सिंह से बतियावत रहलिन हाँ मनु सिंह। और ये जानकारी के बाद अब तो हमार मन करत है भाई बरखा बुन्नी देखा शुरू हो गई ला, आषाढ़ शुरू हो गई ला, आ हमार मन करत है गीत सुने का। तो तू हाली से हमके गीत सुनवा दा, हमारे संगे बहनी लोगन भी जुहत हुई।
3: अरे ठीक है चला, हालिया से सुनवावत है गीत हो मौसम के हिसाब से। महुआ बनर्जी और सखी लोगन के आवाज़ में तो बहन लोगन सुने आ तो हूँ सुना दीदी।

0: बड़ा निक लागे, कितना निक का गीत रहला ना, जब समय के हिसाब से जब
1: एकदम
0: गीत रहला तो कितना निक लगेला हो।
1: हाँ एकदम निक लगला। आ यही समय के हिसाब से अगर खाए पिए पर भी ध्यान देवल जा लाली दीदी तो और बढ़िया हो जाला।
0: सही कहत, जब पानी बरसत रहला तो दुइये चीज खियाल आवेला, चाहे तो पकौड़ी
1: पकौड़ी
0: आ
1: या
0: चाहे
1: खिचड़ी।
0: तो भुट्टा।
1: अरे का बात है, देखा सुन के तो हमरे मुंह में पानी आ गल, हमके लगा था बहिन लोगन के भी मुंह में पानी आ गल हुई। आ देखा मौसम आ सीजन के हिसाब से खाए वाली चीज खाए में भी बढ़िया लगा ला। आ ई तो एकदम गुण का खान है, कहे से मन पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन ई कुल भरपूर मिलला, विटामिन भी कुछ मिलला, ई के खैले से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनल रहला शरीर में, है ना। और खाना भी कितना आसान हो एके दीदी।
0: एकरे साथे साथे जेके सुगरे का बीमारी है ना, वो खाएला तो के फायदा ही करेला, नुकसान नहीं करेला।
1: हाँ नहीं नुकसान करत, लेकिन अपने डॉक्टर भैया से समझ के तब ऐसा भैया बहन लोगों ने के अपने खान पियन में उपयोग में लिया मैं दीदी।
0: आज इतना जानकारी के बाद बतैलू है ना, तो बरखा बुन्नी अगर हो था तो ओकरे जल के भी सुरक्षित संरक्षित करे को योजना बना ले बहनी लोगन, काहे कि ई बहुत उपयोगी होला। और ई जब संरक्षित होला तो ऊ भूमिगत जल जौन अपन है ओके मजबूत करेला, ओके बढ़ावेला।
1: बढ़ावेला और साथे में एक ध्यान और रखें कि भाई अपने छत पर या जौन है कि बरजा है ऊपर ऐसा कोनो बर्तन न रखें जौने में बरखा का पानी रुके, अगर रुकी तो दिक्कत हुई स्वास्थ्य से जुड़ल। तो ये कुल छोट छोट बात ही बहन लोग एकर जरूर ध्यान रखें।
0: और दिक्कत अगर अब हो जाए अगर ढेर का हम बतकही करब, काहे
1: सही
0: कि
1: बात है।
0: घड़ी आ गई ला बीचे में, कहत
1: हाँ
0: कि भाई चले का बेरा हो गई ला, आपन गठरी मोटरी समेटा और चला बहनी लोगन से विदा लिहल जाए, तो कहल जाए नमस्ते।
1: नमस्ते।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अग्नैया। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सतीश चंद्र यादव और साथी। इनकी आवाज में पहले आपको हम सुनवा रहे हैं सोरठी।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सतीश चंद्र यादव और साथी। इनकी आवाज में अब सुनिए निर्गुण।

0: the MOU with all BRIC countries, and today it will be signed.
1: This is the fifth BRICS Heads of National Standardization Bodies meeting being held in Bengaluru under the India chair. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defense, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held in Brussels yesterday, marking a significant step towards strengthening bilateral relations. The United States has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. P.V. Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. P.V. Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियों को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से

0: समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के

0: संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत ने पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव

0: के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशां।

मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं, तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं, एक तस्वीर की तकमील के हम दो पहलू, रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं, मुझको ले जाए कहीं दूर बहाती हुई तू।

तुझको ले जाऊं कहीं दूर उड़ाता हुआ मैं। एक इबारत है जो तहरीर नहीं हो पाई, मुझको लिखता हुआ तू तुझको मिटाता हुआ मैं। मेरे सीने में कहीं खुद को छुपाता हुआ तू, तेरे सीने से तेरा दर्द चुराता हुआ मैं। कांच का होके मेरे आगे बिखरता हुआ तू, गिरचियों को तेरी पलकों से उठाता हुआ मैं। गिरचियों को तेरी पलकों से उठाता हुआ मैं। अम्मार इकबाल की लिखी चंदलाइनों के साथ आइए आगाज करते हैं आज के इस कहकशां प्रोग्राम का।

जिस वक्त मैंने तुम्हें चूमना चाहा, तुम्हारे दफ्तर से फोन आ गया। मैं चाहता था तुम्हारे सीने से सिर टिकाए कुछ देर सुनता रहूं अपनी ही धड़कन, लेकिन उस वक्त तुम प्रेम कविता लिखने में व्यस्त थे। आंखों को कहनी थी एक बात, उधर तुम्हें करना था कोई अनुवाद। बड़े तालाब पर बैठ बहना था कल कल, लेकिन तुम्हारी डायरी में थे कई सारे अपॉइंटमेंट। यूं जरूरी कामों के बीच प्रेम हमेशा स्थगित रहा। प्रेम हमेशा स्थगित रहा।

आज दराज में मिले तेरे खत कई पुराने थे, यकीनन वो मेरे गुजरे हुए खूबसूरत जमाने थे। कुछ वादे टूटे बिखरे और गुम हो गए, ये वो वादे थे जो हमें उम्र भर निभाने थे। वफा की राह में बिछड़े थे हम क्यों कब कैसे, वफा की राह में बिछड़े थे हम क्यों कब कैसे, ये वो मसले थे जो हमें मिल बैठ कर सुलझाने थे। हाय क्या दौर था मोहब्बत के हसीं आलम का, किस कदर हम तेरे इश्क में दीवाने थे, किस कदर हम तेरे इश्क में दीवाने थे।

गजलें यूं ही बेसबब कही नहीं जाती, गजलें यूं ही बेसबब कही नहीं जाती, शायर के तसव्वुर में एक तस्वीर जरूर होती है।

आज के इस कहकशां प्रोग्राम में आपने अजीज कैसी, कतील शिफाई, फरहत शहजाद और डॉक्टर मुख्तरुद्दीन के लिखे कलाम सुने, जिनमें आवाजें थीं उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, तलत अजीज, गुलाम अली और हरिहरन की। इसी के साथ आज का कहकशां प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र आशुतोष को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी गीत मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 240.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच डीआरएम 1233 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन नमस्कार सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर्स से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी बल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से, रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई दो बहनें हैं और मेरी पत्नी, दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल है। पर यही कहूँगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म हैं वो सर्वोपरि हैं और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूँगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफ़ी फौजी हैं, छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं, पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं।
0: वाह क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल। ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूँ और देश की सेवा करूं।
0: वाह क्या

0: क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे, और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है, तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है, हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
0: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा
1: जी
0: होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियाँ सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
0: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
1: जी मैम, मेरी उम्र जो है, मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
0: जी तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
1: जी मैम,
0: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
1: मैं जैसे किस्से कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है, तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पे जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके
1: जी
0: बाबा
1: जी
0: सब फौज में रहे, लेकिन
1: जी
0: आप चार भाई बहन
1: जी
0: इनमें से कोई फौज में नहीं था।
1: जी
0: पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है, वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
1: जी
0: तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति।
1: जी
0: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
1: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
0: वाह क्या
1: मेरे को
0: बात
1: देश
0: है,
1: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
0: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
1: जी
0: जिस तरह से बेटियों को जब ब्याह जाता है कहा जाता है कि जो जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
1: जी
0: वापस लौट कर मत आना,
1: जी
0: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
1: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को, तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीना तोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
0: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है? महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
1: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर
0: जी
1: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं और

0: काफ़ी मात्रा में जो आपको बताना चाहूँगा, मेरी यादें काफ़ी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
1: वाह क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे किस सोच देश प्रेम है ना,
0: जी मैम,
1: और
0: बिल्कुल
1: हमेशा जहन में ये चलता रहता हो कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
1: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का ज़रूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है। क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी, और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियाँ, जिससे जुड़ी हुई कहानियाँ आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम।
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे, और हर बटालियन की कुछ

0: कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन वीरपुर बिहार में हुई। उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डीजी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम में रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया। 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे, और कितना समय निकाल पाते?
1: मैम मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैम।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं। बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में यानी कि सहस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले वो साथी, वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी, और क्या सा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम ज़्यादातर जो है हमारे गाँव में से काफ़ी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा सभी भर्ती हो लेते, लास्ट में मैं हुआ था, तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए, और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए। जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
0: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
1: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं।
0: अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहाँ हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत?
1: मैम ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते, और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टाफ वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया। स्टाफ वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
0: सुखद रहा है मतलब। अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
1: जी मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था, तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
0: तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था, और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आपकी नियुक्ति कब हुई?

0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई
1: जी,
0: थी।
1: ये तो आपने मुझे बताया।
0: जी,
1: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम मेरी,
1: अच्छा,
0: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए जिनको मैं
1: सिखाता था।
0: सिखाता था वो लग गए, तो मेरे को और भी ज़्यादा लगन हुई मैम, मैंने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी SSB बल में भर्ती
1: तो
0: हुआ मैम।
1: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
0: जी
1: यानी कि मास्टर जी।
0: नहीं, मैं
1: हाँ
0: नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता,
1: हाँ
0: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
0: जी मैम,
1: अपने आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है।
0: बिल्कुल
1: तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था जिसके बाद आप की चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं बताना चाहूँगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35BN में। हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपनी SSB को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का। और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो है 4-5 जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित शाह DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में, जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैम
0: जी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ

0: चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था उस वक्त? कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ? कैसा कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो आईजी जो आईपीएस आईजी संजय सर थे, वो और अपने जो है डीआईजी सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर, टू आईसी नरपत सर, डीसी, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ। उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने ये की बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का सीएचएम बना दिया जाए।
0: वाह,
1: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं सीएचएम था, एक नंबर टीम का सीएचएम वो था।
0: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूं? किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
1: नहीं मैम, ये साझा तो
0: नहीं
1: ऐसी
0: किया
1: चीजें नहीं
0: जाता उस
1: किया
0: वक्त,
1: जाता,
0: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
1: मगर
0: जाता।
1: जो है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
0: मुश्किल
1: है।
0: होता है।
1: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
0: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
1: तो
0: करते हैं।
1: जी, जिसमें कि मैम जो है आईजी जो संजय सर और डीआईजी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना। 7-7 दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि
0: जी
1: अंदरूनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: अंदरूनी बातें हैं।
1: जी
0: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे
1: जी
0: ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
1: जी
0: हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
1: जी
0: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी मायोस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मुझ मेरा चयन किया गया, हम हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी डीजीडीएस मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
0: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे,
1: जी मैम,
0: आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं
1: जी मैम,
0: जिनसे नवाजा गया आपको?
1: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है, डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर डीजी डिश मिली है, गोल्डन डीजी डिश, गोल्डन डीजी डिश।

0: 1 स्टार, गोल्डन डीजी डिश 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया मैम।
1: वाह क्या बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति, उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। और ये सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए।

0: ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति,
1: जी
0: उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। और
1: जी
0: ये
1: जी
0: सच्चे
1: जी
0: देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं। जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है, और यकीन मानिए ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सहस्त्र सीमा बल में रह कर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: मैम,
0: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
1: जी।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को, कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे तो ज़रूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए वो कहते हैं ना कि मजबूत एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन से ऐसी ट्रेनिंग थी जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSV में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NAG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NAG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NAG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज़ जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रही हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा। निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ

0: कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: जी नहीं,
0: तो ऐसे में अपने परिवार सबसे पहले की सशस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने? क्योंकि आप फौज में, और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं। कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया? कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
1: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में, उनको पहले से पता था, पर फिर भी जो है एक रहती है। तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली? अब बच्चों पर, जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियाँ सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
0: वाह, क्या बात है। और हम यही कहेंगे, जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं, वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं, उनको देखकर वो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करें,
1: बिल्कुल मैम,
0: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं। और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो,
0: जी
1: तो
0: शुक्रिया।
1: ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
0: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है, इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं, जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें। और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवानी का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15, ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला।

0: यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम जरूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो डीपी है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना
0: जी
1: कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है।
0: जी
1: और मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से, निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं।
0: जी एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें, और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना, और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज़्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे
1: जी
0: और भी बहुत सारी बातें हों करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता
1: जी
0: मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, कि हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज़ में आने के
1: थैंक यू
0: लिए,
1: मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। GD राजेंद्र सिंह जी, 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भगिंदर सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रसिद्ध कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राजस्थानी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत। इसमें आज आपने सुना राजस्थानी गीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, थकान और जिम्मेदारियों के बाद अगर शाम में कोई अपना मिल जाए तो कुछ बातें करे हमसे, थोड़ी मुस्कान दे और ढेर सारी जानकारियां भी, तो मज़ा ही आ जाता है ना। तो बस हम भी लेकर आ गए हैं बातें, किस्सों, शब्दों, इतिहास, मस्ती और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब से भरा जानकारियों का एक खूबसूरत पिटारा।
1: जहाँ होंगी दिल की बातें, युवाओं की आवाज़ और वो सब जो आपको हमसे जोड़े रखे। लेकिन उससे पहले जान तो लीजिए कि आज के कार्यक्रम में आपके साथ कौन है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज के इस सफर में आपके साथ हूँ मैं मोनिशा
1: और मैं दिया, और स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: वैसे किसी भी खूबसूरत सफर की शुरुआत अगर प्यारे से गीत से हो जाए तो माहौल और भी शानदार बन जाता है। तो चलिए शाम को थोड़ा सुरीला बनाते हैं और सुनवाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: मिलेट्स यानी श्री अन्न, स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन, इस विषय पर करेंगे हम सखियों संग बात, जानेंगे आपकी राय। मिलेट्स से बने व्यंजनों के बारे में आपकी बातें 17 जुलाई दिन में 1:15 पर कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। हमें कॉल कीजिए 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। हमारा फोन नंबर है 2221052 और 2221050। वाराणसी का STD कोड है 0542। तो सखियों, हमें रहेगा इंतजार आपके फोन कॉल्स का 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। तो कॉल करना ना भूलिएगा।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी किसी राजा, किसी सेलिब्रिटी या किसी बड़े नेता को खुद चलकर लोगों के घर जाते देखा है? शायद नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी दिन भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों से मिलने सड़क पर आ जाए तो कैसा लगेगा? अजीब लगा ना सुनकर के ये, लेकिन भारत में हर साल ऐसा होता है।
1: लगता है आप सभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आखिर भला ऐसा कहाँ होता है ना? लेकिन दोस्तों, होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, और ये होता है जगन्नाथ रथ यात्रा में।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की, और आज के दिन से शुरू हो रहा है जो पूरे 9 दिनों तक चलेगा।
1: लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस यात्रा ने अंग्रेजी भाषा को एक नया शब्द दिया। यहाँ हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, यहाँ राजा स्वयं झाड़ू लगाते हैं।
0: क्या आपने कभी जगन्नाथ शब्द सुना है? आज अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है ऐसी शक्तिशाली ताकत जिसे रोकना लगभग असंभव हो। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह शब्द जगन्नाथ से निकला है। कहा जाता है कि जब यूरोपीय यात्रियों ने पुरी में हजारों श्रद्धालुओं को विशाल रथ खींचते देखा तो उस अद्भुत दृश्य से प्रेरित होकर जगन्नाथ शब्द अंग्रेजी में उसका निजात किया था।
1: यानी हमारी संस्कृति ने सिर्फ लोगों को ही नहीं, दुनिया की भाषा को भी एक नया शब्द दिया। दोस्तों, जुलाई का महीना आते ही पूरे देश में जगन्नाथ रथ यात्रा की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये यात्रा निकाली क्यों जाती है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हर साल अपने मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर की यात्रा पर जाते हैं। ओडिशा की लोक मान्यता के अनुसार गुंडीचा मंदिर उनकी मौसी का घर है, इसलिए इसे भगवान का अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने की भी कहा जाता है।
1: यानी जैसे हम हर साल कभी ना कभी अपने ननिहाल या रिश्तेदारों के घर जाते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के बीच निकलते हैं। शायद यही वजह है कि इस यात्रा से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत गहरा है।
0: बिल्कुल, एक और खास बात है कि सामान्य दिनों में भगवान मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होते हैं, जहां हर व्यक्ति आसानी से नहीं पहुंच सकता।
1: लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं बाहर आते हैं और अपने भक्तों के बीच रहते हैं, ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके। इसे भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिटाने का प्रतीक भी माना जाता
0: और
1: है।
0: यही कारण है कि लाखों लोग रथ की रस्सी खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धालु से रथ खींचने से उनको जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है सभी पूर्ण होती है, इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं।
1: बिल्कुल, जब हजारों लोग एक साथ मिलकर रथ खींचते हैं तो वहां कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब या जाति धर्म का भेद नहीं होता, सभी एक ही उद्देश्य से जुड़ते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, एकता, समानता और सहयोग।
0: वैसे क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी मंदिरों की मूर्ति से थोड़ी अलग होती है? उनकी बड़ी बड़ी आंखें और अधूरे से हाथ पैर हमें ये संदेश देते हैं कि भगवान हर दिशा में सब पर नज़र रखते हैं और हर किसी को समान भाव से अपनाते हैं। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ यानी पूरे संसार का पालन करने वाला कहा जाता है।
1: सच में, अगर हम इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन न मानकर उसके संदेश को समझें तो ये हमें प्रेम, सेवा, समानता और मिलजुल कर रहने की सीख देती है।
0: और दोस्तों, जब बात साहस, सेवा और देश के लिए कुछ कर गुजरने की हो तो आज का दिन हमें एक ऐसी महान शख्सियत की भी याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने अदम्य साहस से इतिहास रच दिया।
1: जी हाँ, आज 16 जुलाई को हम भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली की जयंती भी मना रहे हैं। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निर्भीक और प्रेरणादायक महिलाओं में गिना जाता है।
0: 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका यानी कि तत्कालीन पंजाब में जन्मी अरुणा आसफ अली ने उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी, जब ऐसा करना अपने जीवन को जोखिम में डालने के बराबर था।
1: और यही वजह है कि उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, हीरोइन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, आइए जानते हैं।
0: दोस्तों, इसके लिए हमें साल 1942 में जाना होगा। देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। उसी दौरान महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि अब आंदोलन की आवाज़ दब

0: लेकिन वे एक बात भूल गए थे, क्रांति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि लोगों के हौसले से चलती है।
1: और ऐसे ही मुश्किल समय में अरुणा आसफ अली आगे आईं। उन्होंने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में तिरंगा फहराकर यह संदेश दिया कि आज़ादी की लड़ाई अभी रुकी नहीं है, बल्कि अब और तेज़ी से होगी।
0: दोस्तों, उस समय ये कदम बहुत साहस वाला था। अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ना चाहती थी, इसलिए वे लंबे समय तक भूमिगत रहकर आंदोलन चलाती रही। उन्होंने हार नहीं मानी और युवाओं को भी आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
1: बिल्कुल, अरुणा आसफ अली सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, बल्कि साहस, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की मिसाल थी। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो विपरीत परिस्थितियां भी रास्ता नहीं रोक सकती।
0: आज़ादी मिलने के बाद भी उनका देश के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ। वे सामाजिक कार्यों, महिला सशक्तिकरण और पत्रकारिता से जुड़ी रही। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के लिए लगातार काम किया।
1: देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके बाद 1997 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।
0: दोस्तों, अरुणा आसफ अली का जीवन हमें यह सिखाता है कि बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं बल्कि हिम्मत और संकल्प की ज़रूरत होती है। उन्होंने उस दौर में आवाज़ उठाई जब ऐसा करना अपने जीवन को जोखिम में डालने के बराबर था।
1: आज उनकी जयंती पर हमें उनके जीवन में तीन बातें जरूर सीखनी चाहिए: साहस, देश के प्रति समर्पण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का हौसला।
0: क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो मुश्किल समय में भी सही बात के साथ खड़े रहते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली को उनकी जयंती पर हमारा शत शत नमन।

0: वैसे दोस्तों, हम हर रोज़ आपको तरह तरह की जानकारियाँ तो देते ही हैं, लेकिन मैंने यह सोचा कि क्यों ना थोड़ा आपको हम अंदर की बात बताते हैं। यानी कि वैसे तो आप हमें हर रोज़ सुनते हैं, पर क्या आप जानते हैं मेरे साथ जो आज मेरी को होस्ट है वो एक लाजवाब व्यक्ति है।
1: अरे मोनिशा, ऐसा क्या बताने वाली हो?
0: कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ और थोड़ी सी तुम्हारी शिकायत अपने दोस्तों से करना है मुझे।
1: अच्छा अच्छा बताओ।
0: बिल्कुल, देखिए वैसे ये तो बहुत प्यारी है लेकिन थोड़ी सी गुस्सैल भी है।
1: अच्छा, तुमने इतना कैसे जान लिया मेरे बारे में?
0: पता है, और भी बहुत कुछ पता है। जैसे तुमको वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, तुम स्विमिंग बहुत अच्छा करती हो, और खाने की बात हो तो तुम्हें तीखा बेहद पसंद है।
1: चलो, अब तुम्हें इतना सब पता ही है तो मुझे ये बताओ कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है।
0: पता है, पर बताऊंगी नहीं बल्कि सुनवाऊंगी, फिर बताना कि मैं सही हूं या गलत।
1: अच्छा, तो ऐसी बात है।
0: जी, और दोस्तों आप भी सुनिए, बताइएगा कि इसकी पसंद का ये गीत आपको कैसा लगा। तो चलिए सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: वाह मोनिशा, मानना पड़ेगा तुम सच में मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। ये गाना सुनकर ना सच में दिल खुश हो गया।
1: बस यही तो मेरा मकसद था, थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ी सी यादें और चेहरे पे एक प्यार से स्माइल। उम्मीद है आज की बातें और ये गाना दोस्तों आपको बेहद पसंद आया होगा।
0: और अब बढ़ते हैं हमारी अगले सेगमेंट की ओर, जिसका इंतजार आपको भी रहता ही होगा, यानी कि यूथ डायरी का, जहां हर दिन हम आपके शब्दों के खजाने में कुछ नया जोड़ते हैं, एक नया हिंदी और नया अंग्रेजी शब्द।
1: बिल्कुल, क्योंकि जितने अच्छे हमारे शब्द होंगे उतना ही बेहतर होगा हमारा संवाद। तो चलिए जानते हैं आज के हिंदी के शब्द।
0: तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है दुष्ग्रह, जिसका अर्थ है किसी गलत बात, गलत आदत या अनुचित विचार को पकड़कर बैठे रहना और उसे छोड़ने के लिए तैयार ही ना होना। जिसके कुछ उदाहरण हैं, हमें दुष्ग्रह छोड़कर खुले मन से ही सही बात को स्वीकार करना चाहिए।
1: और अब बारी है आज के इंग्लिश वर्ड की। तो हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है प्रूडेंट, जिसकी स्पेलिंग है PRUDENT, प्रूडेंट। और इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बुद्धिमानी, विवेक और दूरदर्शिता के साथ सोच समझ कर निर्णय लेता है। और अंग्रेजी में कहे तो अ पर्सन हु इज़ वाइज, सेंसिबल एंड केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस। और इसके सिनोनिम्स होंगे वाइज, सेंसिबल, केयरफुल, प्रैक्टिकल। और सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं अ प्रूडेंट पर्सन ऑलवेज थिंक्स बिफोर मेकिंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजंस।
0: तो उम्मीद है कि आज के ये दोनों शब्द आपने अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लिए होंगे और कोशिश कीजिए कि इन्हें अपनी रोज़मर्रा की बातचीत या
1: का हिस्सा बनाएं, क्योंकि नए शब्द ना सिर्फ हमारी भाषा को समृद्ध बनाते हैं बल्कि हमारे पर्सनैलिटी को भी निखारते हैं।
0: तो अब बारी है जानने की कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं।
1: दोस्तों आज यानी 16 जुलाई के दिन इतिहास में एक बेहद दिलचस्प घटना दर्ज है। साल 1661 में आज ही के दिन स्वीडन के स्कॉट होम्स बैंक ने यूरोप के पहले बैंक नोट यानी कागज के नोट जारी किए थे। उस दौर में लोग भारी भरकम धातु के सिक्कों से लेन देन किया करते थे। ऐसे में कागजी नोटों की शुरुआत ने व्यापार और भुगतान के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। आज हमारे जेब में रखा एक छोटा सा नोट, जिसे सफर करना जो हमारा हिस्सा बन चुका है, उसकी शुरुआत यूरोप से ही हुई थी।
0: 16 जुलाई 1856 को समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस कानून ने पहली बार हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी।
1: और दोस्तों आज ही के दिन 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी कोड नेम के तहत दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था और इसे परमाणु युग की शुरुआत माना जाता है।
0: तो दोस्तों अब बारी है उसका, जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे की।
1: होगा क्यों नहीं, आखिर ये हमारे श्रोताओं को देता है मौका सीधे हमसे जुड़ने के लिए, यानी कि हमारे प्रश्नों का सही जवाब देकर विनर बनने का।
0: तो चलो बिना देरी के बताते हैं आपको आज का प्रश्न।
1: बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कल हमने आपसे जो प्रश्न किया था उसका सही जवाब क्या है और उसके विनर्स कौन है।
0: तो दोस्तों कल हमने आपसे प्रश्न किया था कि हाल ही में विमंडलन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, और इसका सही जवाब है लिंडा नोस्कोवा।
1: और जिन साथियों ने उसके सही जवाब दिए हैं उनके नाम है
0: दिपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़,

0: मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी।
1: सुधांशु शेखर जलालीपुरा वाराणसी से, रवि मौर्य सेमरौल आजमगढ़ यूपी से। इसके साथ ही जिन साथियों ने ईमेल पे हमें अपने जवाब भेजे हैं वे हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम नागनपुरी, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इसी के साथ रिंग रोड नर्मदा एमपी से जिन्होंने सही जवाब दिए हैं वे हैं सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा और ममता बाई वर्मा। नेपा नगर से हैं प्रभु दयाल शुदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शुदे। इसी के साथ खंडवा से हैं श्यामाबाई रायकर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप हमारे प्रश्न सुनते रहिए और सही जवाब देकर बनते रहिए हमारे विनर्स। और अब बारी है आज के प्रश्न की, तो हमारा आज का प्रश्न बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी क्या है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, बांग्लादेश की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है।
0: इस सवाल का जल्दी से उत्तर देकर बन जाइए आप हमारे विनर्स।
1: और आप इसका आंसर हमें भेज सकते हैं हमारा इंस्टा आईडी यूथ एयर वाराणसी, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं
0: जिसकी आईडी है youthairvns@gmail.com पर।
1: तो जल्दी से जाइए, हमें भेजिए अपना जवाब और बन जाइए विनर्स। और तब तक सुनिए ये गीत।

0: वाली श्री अन्न स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन, इस विषय पर करेंगे हम सखियों संग बात, जानेंगे आपकी राय, मिलेट्स से बने व्यंजनों के बारे में आपकी बातें, 17 जुलाई दिन में 1:15 पर कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में हमें कॉल कीजिए 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। हमारा फोन नंबर है 2221052 और 2221050। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सखियों, हमें रहेगा इंतजार आपके फोन कॉल्स का 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में, तो कॉल करना।
1: दोस्तों, अब बारी है उसका जो आपके लिए बेहद काम की होती है, यानी कि रोजगार सूचना। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के बताते हैं आज की रोजगार सूचना।
2: दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC के कुल 500 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी की जा चुकी है, जिसकी आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है।
1: दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी ग्रेजुएट पास होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 निश्चित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।
2: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB द्वारा रेलवे टेक्नीशियन के कुल 6,557 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी की जा चुकी है, जिसकी आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु पदों के अनुसार 30 और 33 रखी गई है।
1: और जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 निश्चित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसकी संपूर्ण जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
2: दोस्तों, कई बार लोग
1: तनाव में रहते हैं
2: और इसी के कारण शौक में धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यही शौक धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाता है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी बात, धूम्रपान सिर्फ सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। उससे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, जो बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी बेहद हानिकारक हो सकती है। और दोस्तों, इसके बारे में हम आपको और बहुत सारी जानकारी देंगे, पर आइए इससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे कि धूम्रपान हमारे लिए कितना हानिकारक है, सिर्फ सिगरेट पीने से सिर्फ जो पीने वाला है उसको नुकसान नहीं पहुंचता, इसके साथ ही जो हमारे आसपास के लोग हैं उन पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है।
1: तो दोस्तों, अगर धूम्रपान से बचना है तो सबसे पहले ना कहना सीखिए। अगर कोई दोस्त या जान पहचान वाला इसके लिए कहे तो बिना झिझक मना कर दीजिए। सच्चे दोस्त कभी भी आपको गलत आदत अपनाने के लिए मजबूर नहीं करते।
0: बिल्कुल, तनाव होने पर सिगरेट की जगह कोई अच्छी आदत अपनाइए, जैसे थोड़ी देर टहलना, संगीत सुनना, योग या एक्सरसाइज करना, किताब पढ़ना या अपने परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करना। ये तरीके तनाव भी कम करते हैं और साथ ही साथ सेहत भी अच्छे रखते हैं।
1: और अगर किसी को पहले से धूम्रपान की आदत है तो याद रखिए, इसे छोड़ने में कभी देर नहीं होती। यही संकल्प, परिवार का साथ और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से इस आदत को छोड़ा जा सकता है। याद रखिए, एक छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ऐसा चुनाव कीजिए जो आपके और आपके अपनों के भविष्य को सुरक्षित बनाए।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, सही चीज़ों को अपनाइए। खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, ऐसी चीज़ें अपनाएंगे तो जीवन बेहतर होता है। और दोस्तों, आपका एक और चुनाव, इवाड़ी को सुनना और हर रोज़ हमारे साथ जुड़ना। हमें भी हर दिन आपके लिए कुछ नया, रोचक और ज्ञानवर्धक लेकर आने की प्रेरणा देता है। ऐसी उम्मीद के साथ कि आज की हमारी बातें आपको पसंद आई होगी, और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं मोनिशा
1: और मैं दिया।
0: तो ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: जयपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। भारत में पर्यावरण अनुकूल आ सतत रेल आवाजाही के बढ़ावा देवे बदे हाइड्रोजन से चले वाली रेलगाड़ी का शुरुआत बिहने से होके जा रहल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर एक रवाना करी हैं। ये रेलगाड़ी जिंद आ सोनीपत के बीच चली।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जिंद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत पंच सम्मेलन का आयोजन कैल गेल। एगो रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया और ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गाँव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गाँवों तक विकास की हर योजना का लाभ पहुँचाना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास उन्मुख बनाना है। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सर्वोच्च न्यायालय CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू कैले पर चिंता जतौलस आ कहलस कि ऐसे विद्यार्थियन में तनाव बढ़ी। न्यायालय सुझाव दिहलस कि एके 5वीं चाहे 6वीं कक्षा में शुरू कैल जाए के चाहें, जौने से विद्यार्थी एके आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना आ न्यायमूर्ति R महादेवन का पीठ केंद्र सरकार से कहलस कि ओ 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करे। सर्वोच्च न्यायालय सज्जो राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन के बुजुर्ग चाहे असाध्य रोग से ग्रसित

0: कैदियन के जल्दी चाहे समय से पहले रिहाई बदे व्यापक नीति बनौले आ लागू कैले का निर्देश दिले हो। न्यायालय देश भर में ऐसे मामलन पर विचार बदे एक तरियन का तंत्र सुनिश्चित कैले के बारे में नीति के 3 महीना के भीतर अधिसूचित कैले के आदेश दिलस। मिर्जापुर जिला के अहरौरा थाना क्षेत्र के कुदारन गांव में एगो बेकाबू ट्रक से भयल दुर्घटना में एक के परिवार के 3 जने के मौत हो गई, वही 2 जने और यो घाही हमें। मिर्जापुर का पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन बतौलें कि घाही लोगिन के इलाज बदे अस्पताले में भर्ती करा दिया गई हो।
1: एक ट्रक जो वाराणसी से सोनभद्र के मार्ग पर जा रहा था, कुदारन चौराहे के पास आगे का टायर फटने के कारण से अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा है, जिसमें 4 से 5 लोगों के दबे हुए होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की कार्रवाई करने लगी, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है एवं 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे।
0: प्रदेश में हो रहल बरखा बैराजन से पानी छोड़ेले के नाते कई गो नदियन का जलस्तर बढ़े लागल बा। अयोध्या में सरजू नदी का जलस्तर बीतल 24 घंटा में 40 सेंटीमीटर बढ़ गई हो आ नदी चेतावनी बिंदु के ढेरे नगीचे पहुंच गई बा। ओजा का प्रशासन एहतियात के तौर पर बाढ़ से निपटले के तैयारी तेज कर दिले हो। बरखा के नाते बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा आ कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी भइल हवे। वहीं देवरियों में सरजू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी देने का, तो ये जान लेते हैं सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे आज रात 8:15 पर। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आज हमको सुनाएंगे गायन। कलाकार होंगे विदुषी किशोरी अमोनकर।

विकसित भारत जी राम जी अभियान 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे आज रात 9:30 पर। शाम 6:30 पर कृषि कार्यक्रम में आज हमको सुनाएंगे मूंगफली की उचित उन्नत उत्पाद तकनीक विषय पर डॉक्टर प्रतीक सनोडिया से सुधीर श्रीवास्तव की बातचीत। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब हमको जानकारी दे दें कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। खेती की बातें, इस कार्यक्रम में मूंगफली की फसल की देखभाल विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर। श्री रामचरितमानस संगीत में पाठ का समय होगा 6:40 पर।

प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल आपको सुनवाएंगे सितार वादन। कलाकार होंगे उस्ताद मुश्ताक अली खां। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 9:50 पर।

और दिन 12 बजे का समय होगा एनसीईआरटी का। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म दूध का कर्ज का गीत। आवाज थी मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: बदलो आदत, बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत, बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।

मोहम्मद रफ़ी गाए फिल्म जब जब फूल खिले के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम में ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही बोलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: अपि तु पूर्णसहमति अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां प्रवासाय निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिता। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंद नगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे सप्तशताधिक 14,000 करोड़ रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य कीर्तिमयी क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य स्वकीयम् एकं सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनं विहितवती। चीनदेशीयां क्रीडिकां हान युए इत्येतां पराजित्य जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचरणे ससंभ्रमं प्रविष्टा। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एक दिवसीय स्पर्धा अद्य साम्प्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज और न्यूज जानी आयरा पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: का हो भोला भैया, का हाल चाल बा?
0: बुझाओन भैया, हाल चाल तो सब निमन बा। तुहार का हाल चाल बा, अपन बतावा।
1: ये भोला भैया, हमारो हाल चाल तो बढ़िया बा। और बताओ, अपने खेती बाड़ी में का होत बा?
0: देखा बुझाओन भैया, इस समय खेती बाड़ी में रोपनी के काम तो हम अधियाए देले बाड़ी, आ
1: अच्छा
0: जल्दी से के समाप्त के हमऊ खाली हो चाहती। और अपन बतावा खेती बाड़ी के बारे
1: अच्छा
0: में।
1: माने तू काम तो अपन सपराय ले ले बड़ा। तो ये बोला भैया, हमरो रोपनी वाला काम तो हो गए बा,
0: अच्छा भैया,
1: अब खाली बिजड़ा रोपे के बा।
0: अच्छा बुझाओन भैया, हम बुझत है जल्दी जल्दी बिजड़ा रोप के खाली होके मेला वाला घूमे का मन बनावत हुआ। काहे से कि आषाढ़ सावन का मेल आषाढ़ सावन में ना मेला शुरू हो जाला। का कहत हुआ?
1: ये तो बिल्कुल सही बुझला हा। आ भोला भैया, बहुत सही है बुझला हा। तोहार नाम हो भोला आ तोहार स्वभाव और विचार भी बड़ा भोला हो। कैसी कौनो बात के बड़ा जल्दी तू बुझ जाला। और जब मेला का नाम लेला है ना हो भोला भैया, तो जानत हुआ आज से रथ यात्रा महोत्सव मेला शुरू हो गए बा। आ जानत हुआ भैया,
0: हाँ
1: ओही
0: बुझाऊँ
1: से
0: भैया।
1: आज जब हम आवत रही है ना भैया पंचायती बदे, तो बड़ा जाम लगल हा।
0: भैया जाम तो लगबे करी, इतना विश्व प्रसिद्ध ही मेला हो जौन रथ यात्रा मेला के नाम से जानल जाला, महोत्सव के नाम से जानल जाला। रथ यात्रा महोत्सव बुझाऊन भैया
1: हाँ भैया,
0: आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू हो जाला और ई 9 दिन चलेला।
1: अच्छा
0: ई 9 दिन का आपन अलग अलग महातिन हो, जेमा भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहिन सुभद्रा के विशाल रथ रहला, जेके लाखों श्रद्धालु लोग खींचन और अपने आप के पुण्य के भागी बनाना।
1: कितना बढ़िया बात बतौला भैया। धर्म कर्म का भी बात होए के चाहिए हमन के पंचायती में।
0: कहे ना भैया।
1: और भोला भैया, कितना बढ़िया जानकारी भी बतौला हा। और हमहन के भारत देश जोन बा, जोने देश में हमहन बाड़ी भैया ना, वो धर्म और संस्कृति का देश हवा।
0: कहे ना भैया।
1: और अपने देश में तौर त्योहार और उत्सव मनावल जाला।
0: बिल्कुल भैया,
1: आई
0: अपने
1: रथ यात्रा एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार हो। ये भगवान के रथ के सवारी के उत्सव के रूप में मनावल जाला। और भोला भैया, जानत हुआ
0: बताओ भैया।
1: जितना भी भक्तगण हुआ ये रथ यात्रा की जब खींचे ना, तो ओके अपने आप के बड़ा शुभ मानना और बड़ा भाग्यशाली मानना।
0: बिल्कुल सही कहला बुझावन भैया। ऐसे कहल गलो अपन रथ अपने हाथ, माने कि अपन जो जीवन रूपी गाड़ी है ना बुझावन भैया,
1: हाँ
0: ओके खुद

0: दे संभाले के होला और चलाए खोला। बाकी अगर प्रभु जगन्नाथ का डोर अगर हम लोग के ऊपर डोर बनेले रहें, थमले रहें, कहे का मतलब यह, और अपन आशीर्वाद बनौले रहें बुजवन भैया, तो ओमेन चार चांद लग जाए।
1: अरे भैया बिल्कुल है, भगवान में श्रद्धा रखे के चाहिए, बहुत जरूरी बा। ये तो बिल्कुल सही बात कहला बोला भैया। जानत हो भैया, जौन कहला है अपनो रथ अपनो हाथ, वैसे ही जीवन के यात्रा में प्रभु भगवान यानी जगन्नाथ भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो जीवन बड़ा खुशहाल हो जाइए।
0: कहे ना भैया।
1: और यही से भैया कहल जाला, जैसे जगन्नाथ के रथ, जैसे जगन्नाथ के रथ तैसे संसार के पथ।
0: पथ बारे भैया।
1: जौने तरह से विशाल रथ के खींचे वाला स्वयं जगन्नाथ स्वामी हुआ, वही तरह से मानव जीवन के कठिन डगर का भी खींचे वाला वो प्रभु जगन्नाथ हुआ।
0: कहे ना भैया, दऊ के बिना तो एक पत्ता भी ना हिलत, हम लोग बचपने से सुनत आवत है जा,
1: बिल्कुल
0: का
1: बिल्कुल
0: बुझाऊन भैया।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा
0: अगर
1: भैया।
0: दऊ का कृपा बनल रही, जगन्नाथ भगवान का कृपा बनल रही, तो जीवन का जितना अड़चन है ना, वो सब छूमंतर हो जाइए, हो बुझाऊन भैया।
1: अच्छा भोला भैया, जानते हो जौन कहला है ना कि जितना भी समस्या बा अगर उनके वो विश्वास बनल बा तो जितना भी समस्या हो दूर हो जाए,
0: बिल्कुल।
1: बस रहते जानत हुआ विश्वास रखे के होइए।
0: देखा, ई एक बात के और दर्शावेला
1: का
0: कि
1: भैया
0: जैसे कहल गेल हो कि जैसे राजा अपने प्रजा के समस्या सुने बदे और अपने प्रजा के समस्या के बीच में जाना, वैसे ही देखा भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त लोगन का कष्ट दूर करे बदे ई रथ यात्रा मेला के माध्यम से प्रकट हुअलन और साक्षात दर्शन देके उनका कष्ट दूर करना।
1: कितना निमन जानकारी देला भैया। आ भोला भैया, जानत हुआ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा अपने बनारस में भी मनावल जाला भैया, अब बड़े धूमधाम से मनावल जाला। और जैसे कि आज 16 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो गई बा, आ वही से आवत लिया जाए तो भैया बड़ा भीड़ भाड़ भी रहल है। आ ठेला पर जनते हुआ एक ठे मिठैया बड़ा तेज बिकाले भैया,
0: नान खटाई
1: नान खटाई, आ नान खटाई के साथ एक ठे परवल का मिठाई है।
0: मिठाई है जोन देखा, वो परवल के मिठाई जोन बाती में कह के एकदम मुंह में मिठास घोल देला बुझाऊन भैया, ये परवल का जोन मिठाई हो ना, ये बाबा जगन्नाथ जी का अति प्रिय हो
1: अच्छा
0: और उनके चढ़ावल जाला, इनके भोग में हमेशा ही लगावल जाला।
1: कितना बढ़िया
0: और
1: जानकारी।
0: देखा जोन कहला नान खटाई के बात, तो भैया देखा हो मार ठेला खोमचा पे नान खटाई लदल हो, और हमार गदेलवा तो आवत रही तभी टोक दिलस है कि बाऊ जात तो हुआ, बाकी वो जोन बाबा के यहाँ मिलेला मेला में नान खटाई, ओके ले ले भैया।
1: अच्छा तो तुहार गदेलवा तो ये मिठैया मंगना हाँ, अजानत हुआ हमार गदेलवा जौन हुआ, अभी जान तो सभी जात बाई कि रथ यात्रा का आज मेला बाय,
0: कहे ना भैया।
1: तो कहत हुआ ये बाबू हमके मिठैया तो लीबे करिया लेकिन गुबरवा और खिलौनो लिए है।
0: भाई देखा, बाऊ से ही तो बच्चन के शान होला, तब
1: बिल्कुल
0: बाऊ जब
1: बिल्कुल
0: निकलल हुअन बाहर तो ई मेला ठेला में बच्चन के और का चाहिए।
1: बिल्कुल भैया। और साथे साथ भोला भैया, भगवान जगन्नाथ का जब यात्रा निकले लेना वो विशाल लकड़ी के रथ पर विराजमान प्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के विशेष दर्शन होला। और एक साथे साथे जो मेला में जैसे खिलौना भैल मिठाई भैल ये मेला का मुख्य आकर्षण बना रहला।
0: लगा तो बुझान भी आज मेला देखे तहूँ जावा जरूर।
1: देखा भैया अब साल भर में तो एक बार मेला आवेला तो जरूर ओके देखा
0: नहीं
1: भैया।
0: तो जात तो हुआ तो देखा, साथे साथे घरेतीन और गदेला लोग के भी ले लिया।
1: बिल्कुल ले ले भैया। बोला भैया जानो तो हुआ
0: हाँ
1: ये
0: बुझान
1: रथ
0: भैया।
1: यात्रा महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन ना हो बल्कि प्रेम समानता सेवा और भाईचारा का भी संदेश दे वाला।
0: कितना बढ़िया बात बतौला हो बुझान भैया। ई भाईचारा के साथे साथे ई रथ यात्रा महोत्सव पर जाति धर्म भाषा में कोनो भेद बात ना होला, सब लोग मिलकर बढ़ चढ़ के भगवान के दर्शन करे ना और समाज में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करेला।
1: बिल्कुल सही कहला भैया। ये रथ यात्रा हमें सिखावे ले कि अपने जीवन में हमेशा सत्य दया करुणा और सेवा के मार्ग पर चले के चाहिए।
0: बिल्कुल सही कला बुझान भैया, दूसरे के सहायता करे के चाहिए, साथे साथे समाज में प्रेम और सद्भाव का भावना फैलाए के चाहिए।
1: अब भैया यही
0: यही
1: से कहल गया कर्म के रथ पर भाग के पहिया जैसन करनी तैसी फलैया।
0: भैया।
1: ये भैया बात बात कही तो हमन के होत रही,
0: बिल्कुल हुई
1: अब तनि सनेसा का समय हो गई बा।
0: तो पंचलोक के सुनवा दे भैया।
1: बिल्कुल भैया सुनवा दे।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मिलेट्स यानी श्री अन्न, स्वास्थ्य और स्वाद का संतुलन, इस विषय पर करेंगे हम सखियों संग बात, जानेंगे आपकी राय। मिलेट्स से बने व्यंजनों के बारे में आपकी बातें 17 जुलाई दिन में 1:15 पर कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। हमें कॉल कीजिए 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। हमारा फोन नंबर है 2221052 और 2221050। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सखियों, हमें रहेगा इंतजार आपके फोन कॉल्स का 17 जुलाई दिन में 11 से 11:30 के बीच में। तो कॉल करना ना भूलिएगा।
4: बोला भैया।
5: हाँ बुजान भैया,
4: सनेसा तो हो गल। हमनो सुन ले ली।
5: बिल्कुल,
4: हमारे किसान भाइयों सुन लेना। तो जानत हुआ जिसे हमन खेती बाड़ी के तो बात करते रलिए जा, अब जिसे धान का रुपाई के बात तो देखा, कोनो भी हम खेती कर जाए, चाहे रबी कहो, चाहे खरीफ कहो, चाहे जायद
5: कहो,
4: जब तक वो खेती में उत्पादन करे बदे बढ़िया और उन्नत तकनीकी ना अपना, भैया तो पैदा नहीं हुई
5: ना। सही कहा।
4: वही बदे आज के बातचीत में मूंगफली की उचित उन्नत उत्पादन तकनीकी के बारे में डॉक्टर प्रतीक सनोडिया और सुधीर कुमार श्रीवास्तव का आज बत कही सुन लिया भैया।
5: बिल्कुल सुनवा दे भैया।
6: डॉक्टर प्रतीक सनोडिया, आप सहायक प्राध्यापक हुआ एग्रोनॉमी विभाग कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। आज हम आपसे मूंगफली की खेती के बारे में जानल चाहब कि जौन हमारे किसान भैया लोग मूंगफली की खेती कर चाहत हो, अगर इस समय जौन चलत हो तो उचित समय हो।
7: हाँ, उचित समय है, ये उचित समय है
6: जी।
7: मूंगफली की खेती के लिए जो बुआई का समय है वो 15 जून से 15 जुलाई तक है। तो अभी हमारे किसान भाई मूंगफली की खेती कर सकते हैं। और इसके लिए जो जलवायु है वो मुख्य रूप से गर्म होना चाहिए और थोड़ा सा नमी होना चाहिए खेत में। तो ये उपयुक्त जलवायु है, जर्मिनेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
6: अच्छा अच्छा, तो अगर खेत की तैयारी की बात हो तो कैसे करे चाहिए, काम करे चाहिए खेत में?
7: जैसे हमारी रबी फसल की कटाई के बाद गर्मी में हम खेत की 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर दें, और जुताई कंप्लीट करने के बाद जो अंतिम जुताई है उसमें पाटा लगाकर खेत को हम समतल कर दें। इसके बाद जैसे जब हम इस समय जब बोनिंग करते हैं तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं उनका जरूर हम एक बार विश्लेषण कर लें। जैसे कि चित्रा है, अंबर है, प्रकाश है, दिव्या है, ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। राज मूंगफली 3, राज मूंगफली 4, इनका हमको प्रयोग करना चाहिए और इनकी बुआई 15 जुलाई तक हम कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद खेत को थोड़ा सा हमें नमी युक्त रखना है, और जब हम बोनिंग करते हैं तो मुख्य रूप से हमें 15 जुलाई तक इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेना है। अच्छा। यही खेत की तैयारी में हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है।
6: और खेत की तैयारी के समय कोनो उर्वरक वगैरह कुछ खाद मिलाव की जरूरत ना हो?
7: हाँ, खेत के समय हम जब उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो बोनिंग के पहले हमें 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटास को हमें खेत में अच्छे से मिला देना है।
6: अच्छा।
7: मूंगफली में मुख्य रूप से जो इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं, लेकिन खेत की तैयारी के बाद बोनी के पूर्व हमें 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटास की जरूर इसमें मात्रा डालना चाहिए। साथ ही 250 किलोग्राम हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली की जो फलियां जब बनती हैं तो कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है और

0: कैल्शियम अगर हमारी मिट्टी में रहेगा तो मूंगफली की फलियां बहुत अच्छे से बनेगी,
1: अच्छा
0: और जिंक सल्फेट का भी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें उपयोग करना चाहिए
1: जी, इनका प्रयोग कौन ढंग से करें जिससे कि
0: इनका।
1: उपयोगिता पूरा मिले कर
0: हाँ,
1: उर्वरक
0: जैसे
1: को।
0: कि हमने आपको बताया है कि जब खेत की हम तैयारी कर लेते हैं तो बोनी के पूर्व इसको हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, जिंक सभी को इसको छिटकवा विधि से हमें खेत में मिलाना है।
1: अच्छा
0: और अगर हम सीड्रिल, जैसे हम आज आज के समय में हम जो सीड्रिल यूज कर रहे हैं बोनी के लिए, तो 30 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए, कतार से कतार,
1: अच्छा
0: और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए। तो अगर हम फर्टिलाइजर सीड्रिल से देना चाहते हैं तो उसमें हमारा एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें फर्टिलाइजर भी साथ ही दिया जा सकता है, तो
1: अच्छा
0: हमारी जो लागत है वो कम हो जाएगी, एक ही बार में बुआई भी हो जाएगी सीड्रिल से, और उर्वरक भी हम दे सकते हैं। तो यह विधि बहुत ही उपयुक्त है और मशीनीकरण के युग में इसको अपनाना बहुत ही अच्छा है किसानों के लिए।
1: तो एकर जो हो जमाव कितना दिन में हो जाला?
0: मूंगफली की बोनी के बाद 3 से 4 दिन बाद हमें इसका अंकुरण दिखने लगता है, और जब हम मूंगफली की बोनी करते हैं तो इसमें खरपतवार भी आना शुरू हो जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें पेंडी मेथिलीन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका प्रयोग हम बोनी करने के 48 घंटे के भीतर, 48 से 72 घंटे के भीतर ही इसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो ये खरपतवार शुरू से 1 महीने तक हमारे खेत में नहीं दिखेंगे, और इस अगर कुछ किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो 20 से 25 दिन बाद अगर उनके पास मजदूर की समस्या नहीं है तो एक गुड़ाई कर दें 20 से 25 दिन के बाद, और अगर वहां पे मजदूरों की समस्या है या बहुत अधिक वर्षा होती है, हम निंदाई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक बाद में एक हर्बिसाइड हम डाल सकते हैं जिसका एमेजा थापिर जिसको हम बोलते हैं, 75 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा अगर हम खेत में डालते हैं तो भी ये खरपतवार मुक्त कर देगा।
1: अच्छा
0: और साथ ही जो ये तो चौड़ी पत्ती वाले घासों के लिए बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशी है, अगर हमारे खेत में सकरी पत्ती के खरपतवार नाशी देखते हैं, जैसे दूब घास है या जंगली चावल है, और भी अगर हम घास खुल के देखते हैं, तो फिर हम उसके लिए प्रोपक यूजा फॉप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो खरपतवार नाशी का प्रयोग तो तभी करें जब हमारे पास मजदूरों की समस्या ना हो, क्योंकि मूंगफली में एक होती है अर्दिंग, मतलब मिट्टी चढ़ाना, तो अगर हम निंदाई गुड़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जड़ों में ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगा, तो निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक है, वो होना चाहिए। और इसके पश्चात जब 40 दिन की हमारी हो जाती है मूंगफली, तो इस समय तक उसको खरपतवार मुक्त रखना है,
1: अच्छा
0: क्योंकि इसी में बहुत सारे कीड़े भी होते हैं और बीमारियां भी होती हैं जो उसमें आश्रय उनका होता है। तो 40 दिन में फिर एक बार हम मिट्टी चढ़ा दें उसके
1: अच्छा
0: पौधों में, तो जब फूल बनना स्टार्ट होते हैं और फलियां उसके बाद बनती हैं तो फलियों को मिट्टी में अच्छे से ढका होना चाहिए,
1: अच्छा
0: और हमारी जो मिट्टी की पीएच है वो 6.5 से 7.5 हो तो बहुत ही उपयुक्त है।
1: तो इतने खेत के तैयारी के समय देख लेवे के चाहिए कि यहाँ पीएच मान कितना
0: हाँ,
1: हो।
0: पीएच मान हमें पहले मिट्टी का जांच करवाना चाहिए, और जब हम बोनी करते हैं तो हमें बीज कितनी गहराई पर रखना है वो भी बहुत आवश्यक है, 5 से 7 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पे बोनी ना हो, चाहे सीड ड्रिल से हम करें या फिर मैनुअली करें।
1: जी।
0: जी
1: डॉक्टर साहब एक बात जानल चाहब कि जैसे बाकी फसल बदे होला कि ओकरे बीज के जौन हो शोधन करे के जरूरत पड़े ले,
0: जी
1: तो का ये मूंगफली की खेती में भी ऐसा हो बीज के शोधन के जरूरत पड़े ले?
0: हाँ, बीज शोधन भी बहुत आवश्यक है। जब हम उर्वरक का प्रबंधन करते हैं तो उसी समय हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी
1: अच्छा
0: इसका प्रयोग करना चाहिए, और ये 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में हम उपचार कर सकते हैं। अगर इसकी उपलब्धता नहीं है तो फिर थायरम या मैनकोजेब, ये
1: अच्छा
0: 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में हम इसको उपचार करके और फिर बुआई करना चाहिए। तो इससे
1: अच्छा
0: बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारी, जैसे कि इसमें टिक्का डिसीज होती है तो वो भी फंगस से होती है, तो अगर अगर हम बीज उपचार कर देते हैं तो ऐसे बीज जनित रोग हमारे बाद
1: न
0: में नहीं
1: होए
0: दिखते हैं।
1: जी
0: और अगर कभी इसके बाद भी हमारे खेत में बीज जनित रोग ये दिखते हैं, टिक्का है, मतलब सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, या रस्ट दिखता है, तो उसके लिए फिर हम लगभग 250 ग्राम के आसपास उसको दवा का घोल बनाकर और उसको छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही कुछ कीट भी हमारी फसलों में दिखते हैं, जैसे थ्रिप्स।

0: रस चूसक जो कीट है, तो उसके निदान के लिए हमें फिप्रोनिल 1.5 से 2 ml प्रति लीटर उसको पानी में मिलाकर उसका स्प्रे करेंगे 15 लीटर के टैंक में, लगभग 30 मिलीलीटर के आसपास।
1: अच्छा।
0: तो वो हमारा थ्रिप्स भी उससे कंट्रोल हो जाएगा। कहीं कहीं अगर एफिड दिखता है, माहू जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए एफिड इमीडा क्लोप्रिड, ये 150 ml प्रति हेक्टेयर।
1: अच्छा,
0: इसको
1: अच्छा।
0: हमको छिड़काव करना है खेत में।
1: अच्छा।
0: और अगर लीफ माइनर की समस्या दिखती है तो क्यूनोलफॉस 2 ml पर लीटर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से कीट और व्याधियों से अगर हम मूंगफली को बचा लेंगे तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इस खरीफ सीजन में हमारे किसान भाई उपज ले सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, इमन और जो रोग लगन है, जैसे जड़ में भी कुछ रोग लग जाना, जैसे दीमक वगैरह वाली जमीन हो,
0: जी जी,
1: तो वहां भी कुछ अपन प्रभाव दिखावो ना, तो उकरे बचाव दिखा का।
0: हाँ, जड़ में जैसे इसमें कॉलर रॉट एक आता है, तो कॉलर रॉट के लिए भी हमें फंगीसाइड जैसे कि जेनेप का प्रयोग करना है। जेनेप जो है, अगर हम बीजोपचार पहले ही करे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखती है, कॉलर
1: अच्छा।
0: रॉड या जड़ गलन जो होता है, तो ये सब रोगों के लिए हमें ये जो फफूंदनाशी है इनका प्रयोग अच्छे से करना चाहिए, और इनका स्प्रे कर देते हैं तो फिर काफी हद तक हमें उससे निजात मिल जाता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब लक्षण क्या दिखाई पड़ा लेकर कैसे जाने?
0: जी, इसमें जड़ गलन में ये होता है कि पौधा हमारा सूखने लगता है, और जब पौधे को हम खेत में जाके उखाड़ते हैं तो वो आसानी से बाहर आ जाता है।
1: अच्छा।
0: और इसकी जड़ के पास काला काला जो उसका रंग हमें दिखेगा जड़ का, जो कि मुख्य रूप से ऐसा नहीं होता है, या फिर जो हमारा कॉलर रॉट है जिसको हम लोग उसको भी सड़न रोग ही हम कहते हैं हिंदी में, तो उसमें भी हमारी जो जहां पे जड़ और तना का प्रारंभ होता है या जो तना होता है मिट्टी में, वहां पे सड़न दिखती है, काला कलर का हो जाता है, और खेत से जब हम निकालते हैं पौधा तो बहुत आसानी से निकल जाता है, और ये पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है, और इसके बाद इसमें फिर कोई भी आगे गतिविधि नहीं होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, एक का पौधा उखाड़ के एकदम दूर ले जाके फेंक दो, चाहिए संक्रमण दूसरे पौधा पर भी हो सकता है?
0: ये भी अगर हमारे शुरुआती दौर पे अगर हमारे कुछ पौधे ऐसे दिखते हैं तो उनको निकाल कर हमें अपने खेत से बाहर कर देना चाहिए, ताकि वो रोग और अन्य पौधों को प्रभावित ना करे। तो ये भी हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और कभी भी हम अगर समन्वित रूप से चाहे खरपतवार का प्रबंधन करें, उर्वरक का प्रबंधन करें, बीमारियों का या कीटों का, तो वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, और उसमें हमारी लागत भी कम होती है और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
1: जी,
0: तो समन्वित फसल प्रणाली को हमें मुख्य रूप से अपनाना चाहिए, कीटों के प्रबंधन में भी और व्याधियों के प्रबंधन में भी।
1: डॉक्टर साहब, अपन जैसे ये समय तो मौसम ऐसा हो कि बारिश भी हो जाता हो,
0: जी
1: नहीं, सिंचाई का व्यवस्था करें?
0: सिंचाई जैसे अभी तो अगर हमारा बारिश के सीजन में जो फसल लगी है तो वर्षा के जल से ही हमें सिंचाई देना है, लेकिन जैसे रवि सीजन में भी कुछ किसान भाई करते हैं, फरवरी और मार्च में उसकी बोनी करते हैं, बुआई करते हैं, तो उस समय 5 से 6 सिंचाइयां आवश्यक होती है। इस समय हमें यह ध्यान देना है कि खेत में ज्यादा अधिक समय तक जल भराव ना हो। अगर जल भराव होगा तो फिर हमारे जो जीवाणु होते हैं गांठों में, मूंगफली की जो जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु होता है, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रभावित होता है।
1: अच्छा।
0: तो जल का निकास बहुत ही आवश्यक है, और रबी में अगर हम लेते हैं तो जल हमें उसमें 5 से 6 सिंचाई अवश्य करना है।
1: अच्छा, अगर सिर्फ मतलब बारिश का पानी नहीं मिला तो? तब
0: अगर हमें अभी बारिश का पानी नहीं मिलता है तो 1-2 सिंचाई हमें करना पड़ेगा। जब उसका फूल आता है, मूंगफली में फूल आता है उस समय, और जब फली बनती है उस समय बहुत ही आवश्यक है सिंचाई करना। जी,
1: तो डॉक्टर साहब, और विशेष का ध्यान रखें किसान भैया लोग, किनकर उत्पादन जो है बढ़िया मिले?
0: हाँ, उत्पादन बढ़िया करने के लिए एक तो अनुशंसित जो किस्में हमने बताया है, जैसे चित्रा है, कौशल है, अंबर, प्रकाश, दिव्या, इन ये उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित किस्में हैं।
1: अच्छा।
0: तो इनका प्रयोग करें, और भी अगर जैसे मान लीजिए रस्ट की प्रॉब्लम होती है तो रस्ट प्रतिरोधी किस्में अगर हमें मिल जाती है, जैसे TB38-M ये तमिलनाडु से विकसित हुई है, तमिलनाडु विश्वविद्यालय से, तो इस तरीके की अनुशंसित किस्में अगर हम प्रयोग करेंगे जिसमें कीट व्याधियों के प्रति
1: प्रतिरोधक
0: क्षमता अधिक है, तो हमारे किसान भाई बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। तो ये बातें मुख्य रूप से ध्यान रखना है।
1: जी जी।
0: और अर्दिंग का मैंने बताया है, अर्दिंग बहुत आवश्यक है। अर्दिंग अगर करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे, तो जो फलियां हैं हमारी वो बहुत अच्छे से बनेगी। और जो हमारी बलुई दोमट मिट्टी है उसका प्रयोग करें, भारी मिट्टी में नहीं करना है क्योंकि फलियां बनने में फिर दिक्कतें आती है।
1: फूफड़ मिट्टी हो एक चाहिए।

0: बलुई दोमट या दोमट मिट्टी का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहेगा,
1: जी
0: उचित
1: जी
0: जल निकास के साथ।
1: जी डॉक्टर प्रतीक सनोडिया, आप इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगन के कि मूंगफली का उन्नत जौन हो ढंग से खेती कैसे कर सकना, कौन कौन बातें का ध्यान रखें, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मूंगफली का उचित उन्नत उत्पादन तकनीक कैसे कैल जाए, इस पे देखा डॉक्टर प्रतीक सनोडिया और सुधीर कुमार भैया का कितना नगद के बत गई रहल, तब बात बत गई तब बुझावन भैया हो गया। अब आगे अपने पंचायती में कुछ सुनाओ थुआ।
3: ये भैया हमन की पंचायती में जब तक गीत गौनई न हो तब तक भैया आनंद नहीं आवे वाला। तो आज के गीत गौनई में सतीश चंद्र यादव और साथी का हमन गीत गौनई सुनो।

0: चला सैया करके किसनिया, सतीश चंद यादव और साथी भैया कई खेमटा रहल।
1: बहुत बढ़िया गीत गवैनी
0: बहुत
1: सुनो बड़ा
0: बढ़िया
1: भैया
0: गीत गवनी हो गल तो बुझान
1: ये।
0: भी
1: हाँ भैया, ये भैया तो ये तो गीत गवैनी तो हो गई,
0: हो गल।
1: अब कल सवेरे का सुनावत हुआ।
0: देखा कल बिहाने 6:05 के हुई खेती के बाद एमए विषय रही मूंगफली की फसल का देखभाल कैसे कैल जाए, करे विषय में जानकारी दिए दिनेश कुमार सिंह भैया। अब बुझान भैया कल सांझी के का सुना हो
1: सांझी
0: तो।
1: के भैया 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में खरीफ की फसल में होए वाली बीमारियां के विषय में बतकही हुई डॉक्टर संतोष कुमार और सुधीर कुमार श्रीवास्तव का। तब
0: तो
1: बोला
0: देखा भी,
1: भैया
0: हाँ बुझाउन भैया देखा, अब चले के भी बेला हो गल, घड़ी इशारा करत हो तो पंच लोग से आज्ञा लेवल जाए, तब पंचो राम
1: राम राम।
0: राम।

0: तेन अप एव ससरजादौ। अत्र इदमेव रहस्यं प्रतीयते यन्मानवजीवने जलस्य बहुमहत्त्वं वर्तते। एवञ्च संक्षेपेण इदं वक्तुं शक्यते यन्मानवजीवनधारणाय यद्यदपेक्षितम् अस्ति तस्मिन् जलस्य साहाय्यं नितराम् उत्कृष्टतरं वर्तते इत्यलं विस्तरेण।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था मानव जीवनी जलस्य महत्वम। वार्ताकार थे प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचना जानने का। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार रीना देवी पत्नी संजय राय निवासी तेंदुई थाना सकलडीहा जनपद चंदौली से दिनांक 24/6/2026 से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 35 वर्ष, कद 5'8", रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। यदि किसी को रीना देवी के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त दूसरी सूचना के अनुसार निकिता उर्फ जूली सिंह पत्नी राजा सिंह निवासी फौसुला थाना सैयद राजा चंदौली से दिनांक 7/6/2026 से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 28 वर्ष, कद 5'4", रंग गोरा और चेहरा गोल है। इनकी आंखें छोटी हैं। यदि किसी भी सज्जन को इनके संबंध में निकिता और जूली के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या इस पते पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली। कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन समेत 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने समेत कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रदेश के ग्राम विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा।
2: विकसित भारत जी राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गांव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़े।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
3: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम। अपने गांव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं, ये आपके ऊपर।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने आज एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 1 हफ्ते की कस्टडी

0: रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर आज सुबह लगभग एक घंटे दोनों से पूछताछ भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर कल ये आदेश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को नाइट सफारी का काम शुरू करने से पहले विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और अनुमतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने बताया कि नाइट सफारी राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी श्रद्धालुओं ने रथ यात्राएं निकाली। वाराणसी में तीन दिवसीय ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का आज शुभारंभ हो गया है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती में भाग लेकर सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। हापुड़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा से सुशोभित रथ को श्रद्धालुओं ने बारी बारी से खींचा। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती गई और ड्रोन कैमरे की मदद से रथ यात्रा पर निगरानी रखी गई। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया रूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जल स्तर

0: तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी।
1: मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मेरी वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज और न्यूज एंड एआईआरएफ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग।

अभी आपने फिल्म साथी का गीत सुना। आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल की, शब्द रचना समीर के थे और संगीत नदीम श्रवण का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी, क्षमा करें, मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की, और फिल्म थी 20 साल बाद।

अभी आपने सुना फिल्म रंग का गीत, आवाज़ थी कुमार शानू और अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की थी और धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने।

मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म लाल दुपट्टा मलमल काका इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारी आज से कलाकार हैं सलमा आगा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत हमारे ऐसे कलाकार थी सलमा आगा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

उमड़ा भारी जनसमूह। शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ, लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों

0: को खोलने के पश्चात रथों से सारथी अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रस माधुरी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी का गीत। आवाज़ थी सुरेश वाडेकर की, आनंद बख्शी के बोल थे और धुन तैयार की थी शिव हरी ने।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर गाए फिल्म प्रेम पुजारी के गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ

0: विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना

0: किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
3: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और फेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। इंडिया अचीव्स मेजर माइलस्टोन ब्रिंगिंग ओवर 1 बिलियन सिटीजन्स अंडर सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees.

0: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दो मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि तीन मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफ्फुज का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीराजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में समाजी तहफ्फुज की कवरेज जो साल 2015 में 19% थी साल 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी समाजी तहफ्फुज के दायरे कार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वजीराजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन तैयार और इंजीनियर की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है। ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनवाएंगे। बाद में वजीराजम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे जहां वो 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वजीराजम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अजसरेनौ तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स आवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़िराअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में खासतौर पर एल नीनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन आईसीआर 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी जिसमें नौजवान साइंसदान मसनूई जहानत, एआई, रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी जो पायदार, जदीद और आबोहवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएआर ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं जिनमें 94% आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मजाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की एक साल तवील प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बुनियादी ढांचे की भारत की गैर मुतवक्के तौसी ने साइंसी इदारों को सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों में तआवुन करने का अहम मौका दिया है। मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर आज नए तामीर शुदा नमो हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शल परवाज का आगाज किया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू और दमन व दीव और दादर और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने मजकूरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ्त हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमो हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद हुई है। बराह रास्त फिजाई राबते से दमन में सियाहत, तिजारत और सरमायाकारी को नुमायां फरोग हासिल होगा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नमो हवाई अड्डे से मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए भी परवाजें शुरू करने का मंसूबा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी अकीदत से सरशार है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत के साथ शुरू हो गई है। नामवाफिक मौसमी हालात के बावजूद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ग्रैंड रोड पर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने की आलमी शोहरत याफ्ता रस्म बारिश के बाद दिन भर के लिए मुअत्तल रही। इससे पहले तकरीबात पर उस वक्त असर पड़ा जब मुबैना तौर पर भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: श्री गुंडीचा मंदिर के करीब भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई जबकि दिगर कई जख्मी हो गए। शदीद जख्मी अफराद को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। उड़ीसा हुकूमत ने इस वाकये की आला सतही जांच का हुक्म दिया है जबकि रथ यात्रा के बाकी हिस्से के लिए हिफाजती इंतजाम और भीड़ को मुनजम करने के तरीक़ेकार को मजीद मुस्तहकम किया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने परिवर्तन स्कीम के रहनुमा उसूलों को मंजूरी दे दी है। इसी स्कीम का मकसद ट्रांसपोर्ट से होने वाली फिजाई आलूदगी और गाड़ियों से कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए पुरानी गाड़ियों की जगह नई और माहौलियात के लिए साजगार गाड़ियां लाने की हौसला अफजाई करना है। ये स्कीम खासतौर पर कौमी राजधानी खत्ता NCR में चलने वाले ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को भारत स्टेज BS6 मेयार से हम आहंग करना या बैटरी से चलने वाली गाड़ियों से तब्दील करने में मदद फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत गाड़ी खरीदने वालों को मोटर गाड़ियों के टैक्स में रियायत, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, गाड़ी के कर्ज में 5% सूद की रियायत और रियायत की हकदार नई गाड़ियों पर साजो सामान के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कम अज कम 8% रियायत दी जाएगी। भारत के रिजर्व बैंक RBI ने मुल्क के मालियाती शमूलियाती इशारिये FI इंडेक्स में बेहतरी का इंदराज किया है। इसके मुताबिक ये इशारिया मार्च 2025 के 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 हो गया है। ये मुतवातिर इजाफा मुल्क के मालियाती खिदमात के बढ़ते दायरे की पेशरफ्त और मुल्कगीर सतह पर मालियाती मसरूफियात की वसूत का अक्कास है। कंपोजिट FI इंडेक्स 97 इशारियों का अहाता करता है जिसमें कोई बुनियादी साल नहीं होता। वहीं ये तीन बुनियादी पैमानों पर भारत के मालियाती इको निज़ाम को भी परखता है। FI इंडेक्स की शुरुआत मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले माली साल के लिए अगस्त 2021 में हुई थी और इसे सालाना बुनियाद पर शाये किया जाता है। अमरीका ने आज सुबह सवेरे ईरान पर अपने हमले मजीद तेज कर दिए हैं। अमरीकी फौज ने शुमाली इलाकों में भी कई अहदाफ को निशाना बनाया और एक बहरी जहाज पर भी फायरिंग की। अमरीका ने इस जहाज पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने मिज़ाइलों और ड्रोन्स के जरिए खित्ते में मौजूद अमरीका के इत्तेहादियों को निशाना बनाया और ख़बरदार किया कि हमलों में मजीद शिद्दत आ सकती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 35 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस बीच ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खबरदार किया कि अगर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन बार बार दी जाने वाली धमकियों पर अमल होता है जिनमें ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की बात कही गई है तो तो ईरान खित्ते के अहम बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है।

0: उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ईरान अमरीका को आमनाए हुरमुज में मदाखलत करने की इजाजत नहीं देगा। आकाशवाणी का खबरों का शोबा जरई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगीलाल जाट के साथ भारत के जरई शोबे की पेशरफ में ICAR के ताउन पर एक खसूसी बातचीत नशर करेगा। इस खसूसी बातचीत को मुल्कगीर हफ्तावार प्रोग्राम में आज रात 9:30 बजे सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी फ्रीक्वेंसीज पर भी सुना जा सकता है। जकार्ता में आज 19 और 23 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुहिम का अख्ताम किया। विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम की जुमरे में और गंगा ने 55 किलोग्राम की जुमरे में सोने का तमगा जीता। 23 साल की उम्र तक के मर्दों के फाइनल में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। वंशज ने फाइनल में 65 किलोग्राम के जुमरे में भरपूर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का निशाना रखा है। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है। भारत को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ओलंपिक में 2 मर्तबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की 5 नंबर की चीनी खिलाड़ी हैन यू को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। कल उनका सामना जापान की नोजोमी ओकुहोरा से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की शिकस्त के बाद सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी रह गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि राजस्थान में इस महीने की 22 तारीख तक इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो 21 जुलाई तक जुनूब मगरबी बहिरा अरब और अगले 2 दिनों तक जुनूबी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका इलाकों में जाने से गुरेज करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने सामाजिक तहफ्फुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगे मील उबूर किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमरीका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।
2: विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने और ग्राम विकास को नई गति देने के उद्देश्य से वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विकसित भारत जी राम जी अभियान 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन का भव्य शुभारंभ गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 को हुआ। जनप्रतिनिधियों, पंचायत

0: पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आए ग्राम प्रधानों की गरिमामय उपस्थिति ने इस सम्मेलन को विशेष बना दिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
1: दीपक प्रज्वलन भारतीय परंपरा में अभिधान है। दीपक ज्योति ही परम ज्योति ही दीपक दीपो हर तुम्हें पापम दीपक ज्योतिर नमोस्तुते।
0: इसके पश्चात अतिथियों का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए संयुक्त आयुक्त केंद्र सरकार श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अतिथियों का अभिनंदन किया और कहा,
2: पंच सम्मेलन वाराणसी में मंच पर उपस्थित श्री कमलेश पासवान जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार श्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक कैंट वाराणसी श्री त्रिभुवन राम जी, माननीय विधायक अजगरा वाराणसी, श्रीमती रोहिणी संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार, कमिश्नर साहब, डीएम साहब और यहाँ के सीडीओ साहब, अन्य अतिथिगण। और इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए सरपंचगण। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 1 जुलाई 2026 को एक इतिहास क्रिएट हुआ जब पूरे भारतवर्ष के लिए ये ऐतिहासिक कानून ग्रामीण विकास के लिए लाया गया, जिसको वीवी जी राम जी का नाम दिया गया। उस महत्वपूर्ण कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पंच सम्मेलन का एक संरचना की गई, उसकी सोच की गई। और उस पंच सम्मेलन में ये एक आइडिया लिया गया कि ये जो हमने विशेष स्कीम बनाई है, इसको सारे सरपंचों से इसकी बातचीत की जाएगी। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कानून का, इस महत्वपूर्ण योजना का जो सबसे पहला पंच सम्मेलन किया जा रहा है वो जनपद वाराणसी में किया जा रहा है, उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय राज्य मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को और वाराणसी को ये मौका दिया कि ये जो अभिनव पहल की जा रही है, जिसमें एक स्कीम के बारे में जो हमका मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है यानी कि ग्राम पंचायत, उनके अध्यक्षों से सीधी बातचीत की जाए, अपनी बातें रखी जाएँ और उनकी बातें सुनी जाएँ, ये जो पहल की गई है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने वाराणसी को चुना और एक अच्छे कंसेप्ट को आगे लाए। इसी तरीके से सर, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, स्वागत भी करना चाहता हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जो कि हमेशा गाँव के विकास के बारे में क्या क्या छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है उसके लिए हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं और हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सर, आपके मार्गदर्शन में सर अब तक हमने जो भी प्रगति की है, अब हम वीवी जी राम जी के माध्यम से जो ग्रामीण विकास का आपका सपना है सर, और भी अच्छी तरीके से उसको साकार रूप में देंगे। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी प्रकार से जो अन्य जनप्रतिनिधिगण मंच पर बैठे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हमारे सरपंचगण जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी हैं और बिहार के प्रदेश से भी हैं, उन सबका स्वागत इस कार्यक्रम के लिए करता हूँ सर।
0: कार्यक्रम में सुश्री रोहिणी आर्या ने सम्मेलन की रूपरेखा और इसकी विशेषताओं की विस्तार से जानकारी दी।
3: विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होने के बाद देश के सबसे प्रथम पंच सम्मेलन में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास भारत सरकार श्री कमलेश पासवान जी, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, श्री धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, ऑनरेबल एमएलए।

0: Shri Tribhuvan Ramji, Honorable MLA, Dr. Sunil Patel Ji, Honorable MLA, Shri G.S. Priyadarshi Sir, Commissioner Rural Development, Uttar Pradesh, CDO, Manchasin Upasthit Mahoday, और यह पूरे एक दिन का कार्यक्रम जिनके लिए हो रहा है और जिनकी वजह से विकसित भारत जी राम जी को धरातल पे बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा, ऐसे हमारे बहुत ही डायनामिक, बहुत उत्साही सरपंचस, जो सरपंच, मुखिया, प्रधान, जो भी हम हमारे अपने अपने राज्य में कहते हो, उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में आए हुए हैं, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड से भी हमारे मुखिया, प्रधान और सरपंच गण पधारे हैं। आप सभी का मैं इस पंच सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका उत्साह देखकर हमारा भी उत्साह द्विगुणित हो गया है। सुबह से जब हम देख रहे थे कि सारे प्रधान और मुखिया गण इस पंच सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए बहुत ही उत्साहित दिख रहे थे, कुछ नया जानने के लिए, विकसित भारत जी राम जी को किस तरीके से अपने पंचायतों को विकसित बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए आपके मन में हमें बहुत जिज्ञासा दिखी और उस जिज्ञासा का, हर एक प्रश्न का उत्तर आज के पूरे दिन के डिस्कशन में आपको मिलने वाला है। और यही कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग या विषय की स्थापना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब विकसित भारत जी राम जी यह अधिनियम पार्लियामेंट ने पारित किया था दिसंबर 2025 में, तभी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय मंत्री जी ने यह कहा था कि एमजी नरेगा के बाद विकसित भारत जी राम जी जब लागू हो जाएगा पूरे देश में, तो वह एक दिन में ही पूरे देश में लागू होना चाहिए और यह लागू होते समय एक दिन का भी व्यवधान, एक दिन का भी डिसरप्शन किसी भी श्रमिक के काम में आना नहीं चाहिए। जैसे कि 30 जून तक मनरेगा के काम चलते रहे और 1 जुलाई को जब विकसित भारत जी राम जी पूरे देश भर में 2.86 लाख पंचायत में जब ये लागू हुआ, तो उस 30 जून से और 1 जुलाई के बीच में जब ये लागू हुआ, तब किसी भी श्रमिक को एक घंटे के लिए भी या एक दिन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट के बिना, काम के बिना रहना ना पड़े, यह हमारा मैंडेट था। और मैं यहाँ जो सारे हमारे सरपंचगण, मुखिया, प्रधानगण आप पधारे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि ये केवल आपके वजह से सफल हुआ है कि 30 जून के बाद 1 जुलाई में एक दिन के व्यवधान के बिना विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में लागू हुआ है। सो कंट्रीब्यूशन के लिए।
1: अपने संबोधन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कमलेश पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार गांव के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
2: ये मेरे लिए फक्र की बात है कि देश की 70% आबादी के लिए आज हम सब लोग यहां पर संकल्पित होकर गांव के विकास की चर्चा करने के लिए इस काशी की नगरी में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और मैं कह सकता हूं, इससे पवित्र स्थान समाज की सेवा करने के लिए, समाज की रूपरेखा बनाने के लिए और कोई दूसरा जगह नहीं हो सकता। जब हम लोगों ने इस एक्ट को चालू किया तो भी एक बहुत ही पवित्र धरती थी तिरुपति की। हम लोगों ने इस एक्ट को आदरणीय अपने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में हम लोगों ने इस एक्ट को वहां पर, इस तिरुपति के पावन धरा पर हम लोगों ने चालू किया। और जैसा कि रोनी मैम बता रही थी कि जब चालू हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। और मैं अपने अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं और ऐसा ही हुआ। और जो विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि एक्ट जब लागू होगा तो पूरा श्रमिक का जो कार्य है बाधित होगा, मैं सबसे पहले तो अपने अधिकारियों को बधाई दूंगा, एक घंटे भी बाधित के बिना ये योजना आरंभ हुआ। साथियों, विकसित भारत जी राम जी और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय है क्या, मैं इस पर चर्चा करूं, इससे पहले मैं बनारस की नगरी की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा, जिनके नेतृत्व में कोई ऐसा सेक्टर

नहीं है, चाहे रोड हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, चाहे नेशनल हाईवेज हो, चाहे गांव की सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे उद्योग हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम काम नहीं कर रहे हो साथियों। लेकिन साथियों, जब पहले आप 15 साल पहले काशी आते थे,

0: काशी आते थे और आज के काशी में आपने कितना फर्क महसूस किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं कल बोट से घूम रहा था, पूरे घाटों का निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे अकल्पनीय लग रहा था, अतुलनीय लग रहा था, अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बनारस पहले था वो बनारस आज में कितना फर्क हो गया। सड़कें चौड़ी हो गई, बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में जाने के लिए सड़कें पहले कैसे होती थी, सकरी गलियां होती थी, लेकिन आज हम जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, व्यवस्थित है। जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना, मैं ये कह सकता हूं कि पूरे बनारस की दिशा बदल गई। साथियों, मैं अधिकारियों से बात कर रहा था, ये आपके बीच में बताना बहुत जरूरी है कि पिछले साल का मैंने डाटा मांगा कि बनारस की नगरी में प्रतिवर्ष कितने लोग आते हैं, तो आपको जान के हैरान होगा कि करीब 15 करोड़ लोग प्रतिवर्ष बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं पूरी दुनिया से, देश से आकर। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजनरी के नाते हुआ है। साथ जो हम काम करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारा विभाग है, जो इस साल एक साल में मात्र 1.5 लाख करोड़ का बजट का एलोकेशन हुआ है साथियों। और आप सोचिए, अगर जो ईमानदारी से हमारे गांव में चला जाए, तो गांव की दिशा ही पलट जाएगी, व्यवस्था ही पलट जाएगी, और गांव के लोगों को शहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही विकसित भारत जी राम जी में हम लोगों ने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। हम तो एक दस्तावेज बना सकते हैं, हम एक एक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसको लागू करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानगण लोगों का है, और ये आप जिम्मेदारी लेकर जाइए। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और हमारे नेता आदरणीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में, ये हमने ये प्रण किया है कि हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे गांव में, हम आदरणीय प्रधानगण लोगों से ये आग्रह करेंगे कि अपने गांव की विकसित पंचायत में बैठकर गांव की पूरी व्यवस्था को हम आने वाले 25 साल में कैसे कार्य करेंगे। मनरेगा की तरह नहीं, हम एक साल इस गांव में अपने समूह की महिलाओं का सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, विवेक पूर्वक, और आज हम यही आपसे भी और अपने आप को भी संबंध करते हुए आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जब आप लोग अपने गांव में जाइए, तो जरूर ये विभाग ने जो व्यवस्था की है आपको बताने के लिए, उसका आप अनुसरण करके अपने गांव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं, यह आपके ऊपर आपको तय करना। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, मैं एक बार पुनः आदरणीय केशव मौर्य जी की तरफ से और अपनी तरफ से इस काशी की धरती धरा पर आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अपनी बात को ही समाप्त करने से पहले एक बार फिर से नारा लगाइए, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेंगे। उन्होंने अपने उद्बोधन में आगे कहते हुए कहा कि
2: चलिए, आप सब लोगों ने जब बाबा विश्वनाथ जी की काशी में आया जाए और हर हर महादेव बोल दिया जाए, तो जन्म जन्म के जो कोई पाप होंगे उससे भी मुक्ति मिल जाती है। एक बार बोलिए, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबका बहुत धन्यवाद। आज इस पंच सम्मेलन में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी का भी बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही प्रेरणादायी और विकसित भारत जी

0: राम जी के उद्देश्य का निचोड़ जिनके उद्बोधन में रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश के ही लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी का आज, चूंकि ये अखिल भारतीय ही कार्यक्रम कहा जाएगा क्योंकि इसमें चार राज्यों का प्रतिनिधित्व है, श्री कमलेश पासवान जी जो भारत सरकार के माननीय मंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश सहित झारखंड बिहार और उत्तराखंड से आए हुए, जैसा चाहे वो ग्राम प्रधान लिखते हों, चाहे वह सरपंच लिखते हों, चाहे वह मुखिया लिखते हों, जिस भी रूप में जिस राज्य में उनका संबोधन होता हो, मैं आप सभी का हृदय से बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सभी को आज यहां इस सफल कार्यक्रम को संपन्न कराने में योगदान देने के लिए बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, विकसित भारत जी राम जी के नाम पर जब यह कानून संसद में बनाने के लिए बिल प्रस्तुत करने का काम हुआ, तो उस समय राजनीतिक दृष्टि से विरोध करने वाले वह विरोध जरूर किए, लेकिन इसके उद्देश्य को जब वो जान गए तो कई चीजें, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सदन के अंदर विरोध करने के लिए भी विरोध की औपचारिकता की जाती है, लेकिन जब वह जान गए कि विकसित भारत जी राम जी जो एक नया कानून मनरेगा के स्थान पर आया है, इसका उद्देश्य विकसित भारत, विकसित प्रदेशों का, विकसित ग्राम बनाने का यह एक मजबूत आधार बनने जा रहा है, तो सब कुछ लोगों ने अंदर से समर्थन किया और जो समर्थन करने वाले अगर नहीं होते तो आज ये कानून बनकर के आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता। तो यह इसका उद्देश्य बड़ा ऐतिहासिक है। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक मनरेगा के नाम पर गांव के विकास के लिए, हमारे श्रमिक भाई बहनों को रोजगार देने के नाम पर खर्च किया गया, लेकिन श्रमिकों के जीवन स्तर में या गांवों का जो स्वरूप बदलना चाहिए, उस गांव के स्वरूप को बदलने के लिए बिना योजना के पैसे को ऐसे खर्च किया जाता रहा जैसे इसका कोई उद्देश्य ही ना हो। अगर हमें गांव का विकास करना है तो हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। अभी मुझे आदर्श ग्राम के संबंध में कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, अभी यहां के अधिकारी लोग मुझे दिखा रहे थे, मैंने उनसे जो कहा वही बात आपसे दोहराता हूं। कोई शहर का जब विकास होता है तो उसका एक मास्टर प्लान बनता है, विस्तृत कार्य योजना बनती है कि आने वाले 50 साल के बाद भी जो पीढ़ियां आने वाली हैं, जब आबादी बढ़ेगी तो हमारी सड़कें कैसी होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, जो जीवन की अधिकांश आवश्यकता है, पढ़ाई की क्या व्यवस्था, दवाई की क्या व्यवस्था, कमाई की क्या व्यवस्था, ये सारे विषय पर विचार करके कार्य योजना बनाई जाती है और उस कार्य योजना के अनुसार काम होता है। आपके पास आज सुनहरा अवसर है, इसका डिटेल तो अधिकारी लोग बताएंगे, लेकिन मैं इतना ही बता दे रहा हूं कि ये जो विकसित भारत जी राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका ये संसदीय क्षेत्र है, वो पिछले 25 वर्षों से, पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब वह देश के प्रधानमंत्री हैं। 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में, इतने लंबे समय तक शासन के मुखिया के नाते जिम्मेदारी निभाने का जब अवसर मिला तो उन्होंने उस अवसर को गंवाया नहीं मित्रों। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो दुनिया में जितने भी प्रदेश थे उन प्रदेशों में गुजरात नंबर एक पर रहता था, गुजरात नंबर एक पर रहता था। और जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वह भारत नंबर एक कैसे हो जाए इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते, देश के अंदर हो चाहे विदेश के अंदर हो, लगातार एक उनके जीवन का लक्ष्य है। अगर विकसित अमेरिका बन सकता है, विकसित चीन बन सकता है, विकसित ब्रिटेन बन सकता है, तो विकसित भारत भी बन सकता है। उसका लक्ष्य दे दिया। यहां मेरे झारखंड के भी मित्र आए हैं, अगर आप अपना कोई लक्ष्य नहीं रखोगे तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कैसे करोगे। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवा की शुरुआत की, देश सेवा की शुरुआत की, और वहां एक गीत गाया जाता था कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं, फूल ही मानते हैं। अगर आप लक्ष्य नहीं रखोगे, अगर विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम उन्होंने कर दिया है अब तक। आप सभी ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया जो भी नाम से आप जाने जाते हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम कच्चे घर में किसी परिवार को रहने नहीं देंगे, उनको पक्का घर देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार डबल इंजन सरकार का संकल्प है। हम झुग्गी झोपड़ी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। इस लक्ष्य के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। इसके कारण 7 करोड़ की संख्या में, गांव हो चाहे शहर हो, यहां तो गांव के हमारे प्रधान सब बैठे, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया जाता है। अब केवल आवास नहीं दिया जाता है, जिन्हें आवास दिया जाता है उनको शौचालय भी उपलब्ध कराया जाता है, उनके यहां बिजली का कनेक्शन हो जाए, पानी का कनेक्शन हो जाए, गैस का कनेक्शन हो जाए, राशन कार्ड बन जाए, आयुष्मान कार्ड बन जाए, यह सारा प्रयास किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, जिससे गरीब के जीवन में कोई कठिनाई जो तमाम प्रकार की रहती है, रहती थी, आज तो लगभग परेशानी इस प्रकार की दूर हो गई है। यह लक्ष्य जब जीवन का होता है कि अगर कोई बीमार है, आप ग्रामों के ग्राम सभाओं के मुखिया हो, प्रधान हो, सरपंच हो, मैं भी एक गरीब परिवार से निकल करके राजनीति के अंदर आकर के आज उत्तर प्रदेश का लगातार 9 वर्षों से उप मुख्यमंत्री के नाते सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं गांव में तमाम गरीब परिवार ऐसे रहते थे जिनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं होता था तो बीमारी के कारण मौत के मुंह में चले जाते। कच्चे घरों में जो लोग रहे उनको मालूम होगा, मैं भी कच्चे घर, मेरा भी कच्चा घर था जब मैं छोटी आयु में था। वर्षा होती थी तो मेरी माताजी बरसात में, पहले छाता भी घर में नहीं होता था गरीब परिवारों में, आप जो गरीब परिवार के बैकग्राउंड के होंगे उनको मालूम होगा, खाद की बोरी ही सर पे डाल करके रात में भी अगर वर्षा होती थी तो छत पे चढ़ करके और उस पानी को कहां से टपक रहा उसको बंद करके आते थे कि नहीं बताओ, ऐसा होता था कि नहीं होता। वह दृश्य हम लोगों ने देखा। आज जब प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो एक बूढ़ी माँ से, मैं ऐसे सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, एक बूढ़ी माँ ऐसे कह रही, कोई मीडिया वाला जाके पूछ रहा है आपको कैसा लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप कैसा सोचती, कहे मैं अपने बेटों को तो नहीं जानती लेकिन मेरा बेटा नरेंद्र मोदी है, उसने हमको खाने की व्यवस्था किया, रहने की व्यवस्था किया, दवाई की व्यवस्था की। जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उत्तर प्रदेश में तो उनको 1500 रुपया महीना पेंशन भी देने का काम किया जाता, उनका सबका आशीर्वाद अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला होता तो आज दुनिया के 35 देश अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिए होते। या जो सम्मान को मिला है, या सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का है, आप सबका सम्मान। मैं आप सबसे केवल यही कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने जैसा कमलेश जी ने कहा उसको दोहराते, उसको आगे बढ़ाते हुए आप अगर आज ग्राम के प्रधान हो ऐसा काम करो। आरक्षण प्रक्रिया में हो सकता है कि कोई गांव किसी आरक्षण श्रेणी में बदल जाए, लेकिन आप ऐसा काम करो कि जिसके ऊपर आप उंगली रखो अगला प्रधान भी वही बने। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं देखता हूं अभी दीदियां वो 15,000-20,000 रुपया महिला कमा करके पूरे समूह में बंटवारा करती हैं, लेकिन उनके चेहरे की चमक देख करके मुझे तो इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितना सुकून 15-20 लाख रुपया महीना कमाने वाला नहीं खुश रह सकता, उससे ज्यादा लखपति दीदियां खुश रहती हैं। और आज इस प्रकार की योजना है, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में अभी बहुत एक बड़ी योजना, जिस क्षेत्र की जिस ग्राम सभा की जैसी जरूरत हो उस प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए, अगर वह दूध का उत्पादन करना चाहते दूध का उत्पादन करने के लिए महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब उसमें पहले क्रेडिट जो केसीसी होता है ना किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें लोन की प्रक्रिया करानी पड़ती, लेकिन इसमें तो एक सामान्य सा फार्म भरना पड़ेगा। फार्म भरने के बाद 20,000 रुपया पहली किस्त के रूप में समूह से जुड़ी हुई दीदियों के खाते में ऑटो मोड़ पर पहुंच जाएगा, उससे वो अपना काम शुरू करने का कार्य कर सकते। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री जी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, तो आप लोग भी चाहिए। ये देश की आधी आबादी है, और आधी आबादी जब सशक्त हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपका परिवार और आपका गांव सशक्त हो जाएगा, विकसित भारत बन जाए, विकसित उत्तर प्रदेश बन जाए, विकसित ग्राम सभा बन जाए।
1: इस सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया तथा पंचायतों को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया। ग्राम विकास जन भागीदारी और सुशासन के संकल्प के साथ आयोजित ये प्रथम पंच सम्मेलन ग्रामीण भारत के विकास को नई दिशा देने की एक सार्थक पहल के रूप में सामने आया। अभी आप सुन रहे थे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विकसित भारत जी राम जी अभियान 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन पर आधारित हमारी ये रेडियो रिपोर्ट। सूत्रधार एवं प्रस्तुति सहयोग था अरविंद कुमार गुप्ता का, प्रस्तुति थी दिलीप यादव की।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे। अहमदनगर से सुनील, लता, शुभम और शुभांगी। पतली गली वारसी से मुश्ताक सुलेमान में साहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला और जावेद मुश्ताक वाला। अनारबाग बनारस से ये पत्र है गुड़िया, शाहिद, रजीना, आयशा, साकिब और जाहिद का। प्रतापपुर से ये पत्र है राम प्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रिया, शुभम एवं सौरभ सान्याल का। आइए सुनते हैं ये अगला फरमाइशी गीत।

जुनून फिल के इस गीत को सुनना चाहा था। धमतरी से संतोष, सरोज, किरण, लता, बबीता, आशा, उषा और पम्मी। भिलाई से ये पत्र है मुकेश, सरिता, गौरव, गरिमा, अरुण और विशाल का। दौलतबाग मुरादाबाद से ये पत्र है अंसार हुसैन, समीर हुसैन, अमीर मलिक और साजिदा परवीन का। इसी गीत को सुनना चाहा था पंचकुला सेक्टर से, सेक्टर 9 से आशु, अश्विन, गोविंद, टोनी और उनके मम्मी पापा। ये है अगली फरमाइशी गीत।

जीत फिल्म के इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, प्यारी नाज, बाबू असलम, बाबू अकरम और बाबू अल्ताफ। हमीरपुर बक्सर से ये पत्र है SD अंसारी, बाबू आफ्ताब, बाबू अल्ताफ और पेंटर बबलू का। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज और समीउल्लाह अंसारी का। इसी गीत को सुनना चाह था गोलघर क्वाद से बेलाल और जीनत प्रवीण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है यादों के मौसम।

इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे सुंदर पूर्व वाराणसी से प्रीति, सौरभ, ऋतु सान्याल, रिया, दिया, मेघना और लकी। कुदीचों की दिलवगरी से ये हैं अनीस, अजीम, नफीस, शेरू, शाहिद, अनवर और मुश्ताक वाला। चोचकपुर गाजीपुर से ये पत्र है राम सकल चौधरी, सूरज, शिवम, सत्यम, आकाश, टुनटुन और सक्कल के। श्रोताओं, अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें। हमारा पता है आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी। हमारा पिन कोड है 221010। पता एक बार पुनः सुन लें। कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी। पिन कोड 221010।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। कलाकार हैं विदुषी किशोरी अमोनकर। प्रस्तुत है इनका गाया राग संपूर्ण मालकोश। आपके साथ तबले पर संगत की है बालकृष्ण अय्यर ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन, कलाकार थी विदुषी किशोरी अमोनकर। आपने सुना इनका गाया संपूर्ण मालकोस। आपके साथ तबले पर संगत की थी बालकृष्ण अय्यर ने। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिन

0: रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और फेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडिचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
3: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen powered passenger trains developed so far. It is powered by 3200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen powered train sets in operation.